101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए

0: की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के साथ।

आज का चिंतन गौतम बुद्ध का ये कथन है कि क्रोध को मन में दबाए रखना वैसा ही है जैसे किसी गर्म कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकने की कोशिश करना। इससे हम स्वयं भी जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनेस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जीवन पर और इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9:30 पर। 10:00 कार्यक्रम होगा पिटारा के अंतर्गत सेलुलोइड के सितारे। सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11:00 और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा और 2:00 का समय त्रिवेणी कार्यक्रम का। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3:00 सखी सहेली।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग।

इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत झलकी एक कुंवारा। लेखक हैं अशोक व्यास, निर्देशक हैं अरविंद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और रात 10 का समय है छाया गीत कार्यक्रम का। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर और रात 11 कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 215।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मूल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधु जन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधु जन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 215। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, अब तक हमने जो चर्चा की है, जो उदाहरण आपने हमें दिए, इसमें विविध तालों पर आधारित गीत जिसमें तबला वाद्य की प्रमुखता थी
2: जी,
1: उस पर बात हुई। और फिल्म संगीत की शुरुआत में तो तबला एक प्रमुख ताल वाद्य था संगति का।
2: हाँ हाँ।
1: लेकिन फिर ढोलक भी एक ताल वाद्य के रूप में आया।
2: हाँ।
1: तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला तबला, ताकि उसे ढोलक के साथ आगे बढ़ना था।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है
1: जी, जी,
2: वो ताल कैसे इसमें भी आए हैं इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए
1: जी।
2: तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का वो आया ढोलक वाद्य के संग में। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफी लोकप्रिय वाद्य है और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता यह है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है
1: जी।
2: ढोलक में शाही नहीं है,
1: शाही नहीं होती,
2: वो खुला बजता है
1: जी।
2: तो ये दोनों का जब मेल होता है तब एक कर्ण मधुर ऐसा संगीत

0: गीत उसमें से उत्पन्न होता है।
1: जी जी।
0: तो हमने जैसे कहा कि कहरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं
1: जी
0: कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं।
1: जी जी।
0: तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो कहरवा है वो कहरवा केवल धागे ना तिना कठिन, धागे ना तिना कठिन, ये मूल ठेका जो है ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है तब ढोलक का अपना एक कहरवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर

0: तो ये कहरवा जो है, कहरवा ढोलक और तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा, तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई।
1: क्या बात है। और मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे
0: इसमें? मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है
1: जी,
0: वो सुनाना चाहूंगा, दिल पुकारे आरे आरे,
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत।
0: जी जी जी
1: जी जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाजें हैं, एसडी बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।

0: हाथी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में, संगीतकार सचिन देव बर्मन। ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखाई दी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के संयोग की, इससे जो नाद बना और ताल संगति हुई।
1: हाँ।
0: लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो ताल वाद्य हैं, उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ।
1: हाँ जी।
0: कोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है?
1: बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी
0: जी,
1: क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे हैं कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी संगत कर रहा है तबला
0: जी,
1: और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं, वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला, दो अंतरों के बीच में
0: जी,
1: तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे परकशन उसमें बज रहे हैं
0: जी जी, ऐसे कई गाने हैं।
1: हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूंगा
0: जी,
1: नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले ले, राम और श्याम फिल्म
0: जी,
1: का
0: जी, जी बहुत सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का बड़ा अच्छा मेल देखने को मिलता है
1: जी।

0: होती है। अगली कड़ी में हमारी आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष।

श्रोताओं, फिल्म राम और श्याम का गीत आप सुन रहे थे, रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार नौशाद। और इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रंगीन रातें इस फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज, केदार शर्मा के बोल और संगीत है रोशन का।

रंगीन रातें फिल्म का ये गाना आपने सुना, आंखों की बात इसमें कही गई है। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं पटरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मीना कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं राज हट इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

भोले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना जानेसर अख्तर का लिखा हुआ, ओपी नैयर का संगीत बद्ध किया, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम श्रीमती 420।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। भक्त संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश का प्रसारण होगा सुबह 7:30 से और कार्यक्रम सुर संगम सुनिए सुबह 8:15 से। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनिए सुबह 8:30 से। कार्यक्रम में आज की बात होगी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। साथ ही भेंट वार्ता सुनिएगा स्तन कैंसर जागरूकता ही बचाओ, जानकारी देंगे ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा। आपसे बातचीत करेंगे संजय धरतीवेदी। व्हाट्सएप पर भेजी गई श्रोताओं की फरमाइशें शामिल करेंगे सुबह 9 से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से सीधे जुड़ेंगे हेलो अयोध्या में सुबह 9:30 से और रात्रि 9:30 से। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल से आज की कड़ी सुनिए सुबह 11:55 से। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुनिए दोपहर 12:30 से और फेसबुक पर भेजी गई श्रोताओं की पसंद हम शामिल करेंगे दोपहर 1 से कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि सुनिए दोपहर 2 से। सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तकनीक शिक्षा में कौशल उन्नयन, ये दो चर्चा के विषय होंगे आज के कार्यक्रम अंगना में दोपहर 2:30 से। साथ ही दंत चिकित्सक डॉक्टर विनोद शुक्ला से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी दांतों की बाइट की समस्या कारण एवं निवारण विषय पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी सुनिए दोपहर 3 से। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 से, जिसमें आज चर्चा होगी सभ्यताओं के मध्य संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। ओबी रिकॉर्डिंग सुनिए CBSE बोर्ड से इंटरमीडिएट में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त छात्रा आनंदिता चतुर्वेदी से दिशा श्रीवास्तव की बातचीत। व्यक्ति विशेष में आज जानिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, साथ ही होगा खेल संसार भी। कार्यक्रम लोक संगीत सुनिए शाम 5:30 से, शाम सुहानी शाम 6:20 से और गूंजे स्वर गांव के सुनिए शाम 6:30 से। हरियाली बढ़ाएं पर्यावरण बचाएं, ये चर्चा का विषय रहेगा आज के कार्यक्रम कृषि जगत का शाम 6:45 से। साथ ही कार्यक्रम में श्री राकेश कुमार वर्मा से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा DRS धान की सीधी बुआई और ड्रैगन फ्रूट की खेती।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन सुनिए रात्रि 8:15 से और गैर फिल्मी गजल सुनिए महफिल गजल कार्यक्रम में रात्रि 9:15 से। इन सब कार्यक्रमों के अलावा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और समाचार अपने नियत समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। तो ये था संक्षिप्त विवरण हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जनविश्वास एक और जनविश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जनविश्वास दूर के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके इस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा

0: धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

आज के खिलते दिन का आरंभ हम करते हैं ईश्वर वंदन के साथ। ये शिव वंदना आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में।

0: कार्यक्रम अमृत कलश में कुछ और भक्ति रचनाएं हम लेकर आएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: भाई।
1: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

आज के दिन का आरंभ हम कर चुके हैं भक्ति रचनाओं के साथ। कार्यक्रम है अमृत कलश, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी, देश और दुनिया में कहीं भी। लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना आप सुन रहे हैं। रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा के और संगीत रचना है पंडित हृदयनाथ।

0: पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

कार्यक्रम अमृत कलश की ये अंतिम प्रस्तुति आपने सुनी, जगजीत सिंह के स्वर में माँ अंबे के चरणों में वंदना। इसी प्रस्तुति के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम अमृत कलश।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कार्यक्रम अमृत कलश आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है।

0: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब

0: एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया, पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है

0: कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुति कार्यक्रम सुर संगम।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुर संगम की ये पहली प्रस्तुति है शंकर महादेवन के स्वर में। गीत की रचना और संगीत रचना शंकर महादेवन की ही है।
5: ताक्ष कदु, ताक्ष कदु, ताक्ष कदु, ताक्ष कदु, ताक्ष कदु, ताक्ष कदु।

0: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से सुर संगम। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां दे दें। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव्स हैं, जिनसे बचने के लिए हमें क्या नहीं करना है इस पर विशेष ध्यान देना है। तो हम आपको इसी संबंध में कुछ जानकारियां दे रहे हैं कि अधिक गर्मी वाले समय में, विशेषकर दोपहर 12 से 3 के बीच सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें, नंगे पैर बाहर ना निकले, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से बचें, बासी भोजन ना करें, और साथ ही बच्चों और पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों में ना छोड़ें, गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े ना पहने, जब बाहर का तापमान अधिक हो तो शारीरिक परिश्रम का कार्य ना करें, मतलब खुले में शारीरिक परिश्रम ना करें, और अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचें, रसोई वाले स्थान को ठंडा रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें, शराब, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये शरीर में निर्जलीकरण करते हैं। तो आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, समय समय पर पानी भी पीते रहना है, इस तरह से आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं गुलाम अली की आवाज में गजल।

0: गई।
1: आज के कार्यक्रम सुर संगम की ये अंतिम पेशकश चंदन दास की आवाज में गजल कलाम इब्राहिम अश्क का। गई।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम सुर संगम।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: श्रोताओं ने कार्यक्रम सुर संगम सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: प्रणाम अयोध्या। सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिवादन है। आज के कार्यक्रम में आज की बात होगी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर, और ब्रेस्ट कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा बताएंगे स्तन कैंसर जागरूकता ही बचाव विषय पर जानकारी। तो आइए पहले आपसे कर लेते हैं आज की बात, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। यह दिवस प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 में स्थापित किया गया था, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने का तथा भेदभाव को समाप्त करने की वैश्विक अपील का प्रतीक है। चीन द्वारा किए गए प्रस्ताव को 80 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि सभी सभ्यताओं की उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत हैं। संवाद ही शांति का मार्ग है। इस विचार के साथ मानव सभ्यता में एकता, समान, गरिमा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। आज के समय जहां असहिष्णुता, गलत सूचना और विदेशी विरोध बढ़ रहा है, संवाद विश्वास और समझ पैदा करने का एकमात्र रास्ता है। सभ्यताओं की विविधता एक उत्सव है, ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक शांति, मानव कल्याण और सतत विकास इसी से संभव है। सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यताओं की समृद्ध विविधता और बातचीत किसी भी वैश्विक संकट को सुलझाने

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी अयोध्या के साथ सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया में कहीं भी। श्रोताओं, आज हम आपको बेहद गंभीर और आवश्यक विषय पर जानकारी सुनवाने जा रहे हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में हम सही इलाज नहीं करा पाते। जानकारी है स्तन कैंसर, जागरूकता ही बचाओ। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा, और आपसे बातचीत की है।

0: संजय धर द्विवेदी ने।
1: श्रोताओं, आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उसकी जानकारी उनको चाहिए होती है। ऐसा ही एक विषय इस समय बहुत व्याप्त हो रहा है, वह है स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। इससे बचने के लिए कितनी जागरूकता होनी चाहिए, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा जी को। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी की स्टूडियो में आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे उन तमाम श्रोताओं की तरफ से जो इस विषय पर जानकारी चाहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार द्विवेदी जी, और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर, बराबर पढ़ने में आ रहा है कि जो स्तन कैंसर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है
2: जी।
1: इसमें ऐसा लगता है कि जैसे जागरूकता जो है उसका एक बहुत बड़ा अभाव है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कितना कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर।
2: देखिए, महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर्स में से ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। अपने ही देश में नहीं, विश्व में सब जगह ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पोजीशन पे है। अच्छा। कि सबसे कॉमन कैंसर होने में। तो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में एक मिनट में 3 नए केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो रहे हैं पूरे विश्व भर।
1: पूरे विश्व में
2: अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है 1.5 से 2 लाख नए केसेस प्रति वर्ष डायग्नोज हो रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन समस्या है और इसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपनी क्लिनिक में देखें तो अगर हम 100 मरीज देख रहे हैं जो ब्रेस्ट में गांठ लेके आते हैं, तो सारी गांठें कैंसर की नहीं होती। मुश्किल से 10% कैंसर की होंगी, बाकी 90% हो सकता है साधारण गांठें हो, लेकिन गांठें हैं तो उसका जो है जांच होना जरूरी होता है। बहुत कॉमन समस्या।
1: एक चीज मेरे मन में आई सर, क्या पहले ऐसा नहीं होता था या पहले बिल्कुल जागरूकता नहीं थी जिसके कारण लोग जान ही नहीं पाते थे? हमारी बहनें माताएं कभी चर्चा ही नहीं करती थी
2: जी। देखिए, एक तो जागरूकता का अभाव के कारण और दूसरा शर्म के कारण अपनी सोसाइटी में इस चीज पे चर्चा करना जो है थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है।
1: अच्छा, नहीं,
2: तो इसलिए महिलाएं, और जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें महिलाएं पहले परिवार, फिर घर, फिर अपने आप को देखती हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो और ऐसे ही इस चीज को वो बहुत निग्लेक्ट कर देती
1: हैं। सारे समय अपने पर ध्यान ही नहीं
2: देती। जी जी। तो इसकी वजह से जो है, इस अभाव की वजह से बहुत बार हम लोग बीमारी बहुत लेट पकड़ते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम लोग जो है जागरूकता फैलाते हैं, तो महिलाओं को अगर उसके लक्षण पता चल जाते हैं तो वो समय से डॉक्टर को दिखा पाते हैं।
1: अच्छा, बहुत सारे लोग चर्चा तो नहीं करते हैं, लेकिन आज भी जब वो हमको सुन रहे हैं तो ये जानना चाहते होंगे क्या कुछ उसके लक्षण ऐसे हैं जो शरीर पर प्रकट होते हैं जिनसे वो सतर्क हो जाए।
2: जी, जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है कि उसके लक्षण पहचाने जाए। तो महिलाएं अगर अपने ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस करें
1: जी,
2: और स्पेशली अगर वो गांठ दर्द नहीं कर रही है, पेनलेस गांठ हो, तो उसके प्रति जागरूक रहे। वो हो सकता है कि कैंसर की गांठ होने की संभावना रहती है। तो पेनलेस गांठ, बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अगर दर्द होगा तो समस्या है, दर्द नहीं है तो समस्या नहीं है। लेकिन उल्टा है, अगर कोई दर्द नहीं कर रही है गांठ, पेनलेस पड़ी हुई है गांठ, तो वो ज्यादा समस्या का कारण हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है निप्पल से किसी प्रकार का मटमैला गंदा पानी या खून का रिसाव आना। अगर वो रिसाव आता है, बहुत सारे रिसाव निप्पल से कुदरती तरीके से आते हैं, जैसे दूध का रिसाव होता है या कभी कभी पानी का रिसाव होता है, वो उतने खतरनाक लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर मटमैला गंदा पानी या खून आ रहा है तो वो एक लक्षण स्तन कैंसर का हो सकता है। दूसरा, अगर बगल में कांख में गांठ हो जा रही है तो वो एक लक्षण होता है। अगर निप्पल के आकार में
1: परिवर्तन आ रहा है, रहती है कांख में, वो बराबर बनी रहती है या बनती भी
2: नहीं, अगर कैंसर बढ़ गया है तो फिर वो ब्रेस्ट से बगल में गांठ आने की समस्या होती है। तो एक कभी कभी ब्रेस्ट में भी गांठ नहीं महसूस होती है, सीधे कांख में जो है एक्सिला में गांठ महसूस होती है
1: जी।
2: निप्पल के आकार में परिवर्तन होना ये भी एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी निप्पल अंदर धंसना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल कहते हैं। तो निप्पल के रिसाव के साथ अगर आकार में परिवर्तन आ रहा है तो वो एक लक्षण हो सकता है। या स्तन की खाल मोटी हो रही हो, लाल हो रही हो, तो वो एक लक्षण हो सकता है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो एक पेनलेस गांठ होना ब्रेस्ट में, निप्पल के आकार में परिवर्तन आना, निप्पल से रिसाव आना, बगल में गांठ होना या खाल में कोई परिवर्तन होना, ये लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिसको महिलाओं को पहचानना चाहिए।
1: खुद में अगर यदि इस तरह कोई चीज दिखे तो तुरंत हमें सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर से संपर्क करें
2: जी।
1: कितना रिस्की होता है ये, क्या ठीक हो सकता है, किस स्टेज में ठीक हो सकता है?
2: देखिए, कैंसर का नाम सुनते ही थोड़ा सा सबको भय तो हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन मैं अपने सारे श्रोताओं को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि यदि ये बीमारी समय से पहले दूसरे चरण में पकड़ी जाए तो इसका भरपूर जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो भय तो होता है, लेकिन इससे डरना नहीं है,
1: लड़ना है इससे
2: लड़ना है। तो इसलिए जागरूकता रखें, समय से डॉक्टर के पास पहुंचे, और समय से अपना इलाज कराएं।
1: डॉक्टर प्रतीक मेहता जी, कई बार जैसे अभी आपने कहा कि

0: शांति समझते देर हो जाती है, जल्दी कैसे जान सकते हैं हम इसको? हाँ। जिससे कि उस खतरे में न जाएं।
1: जी,
0: इसका निदान हो जाए।
1: जी, जी। देखिए, मैंने जैसा कि आपसे बोला कि ये गांठें यूजुअली दर्द नहीं करती है, पेनलेस हाँ, गांठें हाँ, होती हैं, तो इनको एक्टिवली ढूंढने की जरूरत पड़ती है हाँ, या एक्टिवली मरीज को पहचानने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग महिलाओं को जागरूक करते हैं कि हर महिला को महीने में एक बार 35 साल की उम्र के बाद अपने स्तन को खुद टटोल के देखने की आदत डालनी चाहिए।
0: जी।
1: महीने में एक तारीख कोई एक बांध लें, अगर मासिक नियम से हो रहा है तो बेस्ट टाइम होता है जिस दिन मासिक धर्म खत्म हो रहा हो, उसके बाद अपने आप को नहाने जाने से पहले स्वयं अपने ब्रेस्ट को चेक करने की आदत डालें। भाई, इसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब स्वतः अपने स्तन को टटोल के देखने की आदत, ये हर महिला को करनी चाहिए 35 साल की उम्र में।
0: जी।
1: और उसमें आप नहाने से पहले लेट के चपटे हाथ से अपने बाएं स्तन को दाहिने हाथ से टटोल के देखें,
0: लेट करके,
1: लेट के भी करना है, बैठ के भी करना है। लेट के आप टटोलेंगे तो छाती के अगेंस्ट आप देख पाएंगे, तो बाएं स्तन को दाहिने हाथ से टटोल के देखना है और दाहिने स्तन को बाएं हाथ से चपटे हाथ से उठा के नहीं देखना है, और कोई गांठ अगर महसूस होती है तो वो देखना है। बाकी एक शीशे के सामने खड़े होकर या बैठ के आप देखें अपने निपल, दोनों निपल्स को तुलना करें कि कोई आकार में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कोई खाल में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, और निपल को थोड़ा स्क्वीज करके दबा के देख लें कि किसी प्रकार का रिसाव तो नहीं आ रहा है, और रिसाव अगर आ रहा है तो समय से डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही में आप बगल में कांख में एक्जिला में अपने आप को टटोल के देख लें कि वहां कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है, और ये प्रक्रिया हर महीने नियमित तरीके से करने की जरूरत है। और यदि ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण एक बार देखने में लगता है कि पिछली बार नहीं था और इस महीने हमको महसूस हो रहा है, तो समय से विशेषज्ञ को दिखा के इसको जांच करा लें। जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, लेकिन अगर शुभा है तो दिखा लेने में कोई हानि नहीं है।
0: एक चीज मेरे मन में आया जो मैं आपसे जरूर पूछा चाहता हूँ अपने श्रोताओं के लिए, कि वैसे तो शहर में बहुत सारे फिजिशियन रहते,
1: जी,
0: क्या इन्हीं लोगों को दिखाना है या कोई एक अलग विशेषज्ञ?
1: देखिए, हर चीज के विशेषज्ञ होते हैं, हर स्पेशलिटी हर बीमारी के विशेषज्ञ अलग होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के विशेषज्ञ जो होंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर में डील करने वाले सर्जन होंगे, जैसे ऑंको सर्जन हो गए, एंडोक्राइन सर्जन हो गए, तो हम लोग सब जो विशेषज्ञ होते हैं इस फील्ड में, वो शायद इसके बारे में आप मरीज को ज्यादा
0: सेवाएं दे सकते हैं।
1: जी जी,
0: आप लंबे समय से मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं।
1: जी,
0: क्या आपने कभी महसूस किया कि इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम भी फैलते हैं?
1: देवी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा हमसे।
0: सर,
1: देखिए, सबसे बड़ा भ्रम तो यह है कि अगर कैंसर हो गया है तो ये जानलेवा है। तो इस भ्रम को मन से निकालें, अगर समय से कैंसर का डायग्नोसिस बन रहा है तो इलाज भरपूर है।
0: जी,
1: तो ये भ्रम मन से निकालना होता है। उसके अलावा हमने जैसा भी ये बताया था कि लोग सोचते हैं कि अगर दर्द नहीं है तो समस्या नहीं है, ये भ्रम गलत है। अगर दर्द नहीं है तो वो गांठ खतरनाक होने की समस्या हो सकती है, तो ये भ्रम भी अपने मन से निकालने की आवश्यकता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है वो सिर्फ बुजुर्गों में होता है, यंग फीमेल्स में, बच्चों में नहीं होता। तो हाँ, उसमें इंसिडेंस कम होता है, चांसेस कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है
0: वैसे
1: चांसेस बढ़ते हैं। तो ये ना सोचे कि सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, तो ये भ्रम मन से निकाल दें। 30-35 साल के बाद होने की संभावना धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। दो तीन और भ्रम है, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चोट लगने से कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर किसी बुजुर्गवार को कभी बच्चे का या पोते का या पोती का सर लग गया, तो उससे जो है जरा सा दर्द शुरू हुआ, तब वो टटोल के देखती है तो उनको गांठ महसूस होती है, तो वो तो सोचती है कि चोट लगने की वजह से कैंसर हो गया। तो ये एक भ्रम है कि चोट लगने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन वो चोट लगने से उस गांठ के बारे में पता चलता है,
0: बीमारी जो पहले से पनप रही
1: है। जी, एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि अगर गांठ है तो हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सुई की जांच बता देंगे, और सुई की जांच किसी भी ट्यूमर में करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी।
0: ये आम बात,
1: ये बहुत आम भ्रम है, जिसके बारे में मैं श्रोताओं को जागरूक कराना चाहूंगा कि सुई की जांच चाकू लगने से, ऑपरेशन होने से कोई भी ट्यूमर नहीं फैलता है। सुई की जांच करके हम लोग मरीज में ये देखते हैं कि वो साधारण गांठ है या कोई दूध की गांठ है या इन्फेक्शन की गांठ है या कैंसर की गांठ है, तो वो हम लोग को डायग्नोसिस बनाने में मदद करता है, और वो किसी भी प्रकार से मरीज की बीमारी को
0: बढ़ाता नहीं है।
1: तो ये एक भ्रम है जो हम अपने श्रोताओं को जागरूक करना चाहेंगे कि सुई की जांच से बीमारी नहीं फैलती है। बहुत सारे परिवारों में देखा गया कि किसी पर एक परिवार के सदस्य को कैंसर हो गया है तो लोग उसको छुआछूत की बीमारी मानती है, खाना अलग कर देते, कमरे में अलग कर देते। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, और साथ में रहने से और छूने से और साथ में खाना खाने से ये फैलती नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि कैंसर हो जाने से ये ना सोचे कि जीवन काल समाप्त हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा लक्षण देखे तो समय से डॉक्टर से मिलके इस गांठ का जांच करा लें। कैंसर भरपूर तरीके से समय से अगर इलाज किया जाए तो इसका इलाज,
0: यानी इसका इलाज संभव है।
1: जी जी जी जी,
0: तुरंत प्रकाशन लेकर के अगर हम उचित डॉक्टर से अगर मिलते हैं, परामर्श करते हैं, तो इसका इलाज संभव है।
1: जी जी,
0: डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा जी, आप ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हैं, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने स्तन कैंसर

0: संबंध में, उसकी जागरूकता के संबंध में और उसके भ्रम के संबंध में और बचाव कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें आपने हमारे श्रोताओं को बताई। आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्तन कैंसर, जागरूकता ही बचाओ, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा और आपसे बातचीत की संजय धर द्विवेदी ने। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या जारी है, छोटे से अंतराल के बाद हम वापस कार्यक्रम में हाजिर होते हैं।
2: आपके संदेश,
3: संदेश से आते हैं
2: आपके गीत,
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको बता दें हीट वेव या हीट स्ट्रोक से के क्या लक्षण हो सकते हैं। गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना, पल्स तेज होना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, सिरदर्द, मिटली आना, थकान, कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना या मूत्र न होना या कम होना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी जानकारी आपको दे दें कि उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों, विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है और शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40.6 डिग्री सेल्सियस यानी 105 डिग्री फॉरेनहाइट या अधिक तापमान या गर्म हवा में रहते हैं, उनके मस्तिष्क में क्षति होने की संभावना अधिक होती है। तो ऐसे में आप क्या करें, इस पर भी नजर डालें। प्रचार माध्यमों पर हीट वेव या लू की जो चेतावनी आती है उसको नजरअंदाज न करें, उस पर विशेष ध्यान दें। अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के पसीना सोखने वाले हल्के वस्त्र पहने, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में काम करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़े से ढकें और छाते का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोछें, नहलाएं या चिकित्सक से संपर्क करें। यात्रा करते समय पीने का पानी अवश्य साथ रखें। ORS या घर में बने हुए पेय पदार्थ, लस्सी, चावल का पानी, नींबू, छाछ आदि का प्रयोग अधिक से अधिक करें।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी कभी रुकती नहीं, अपनी रफ्तार से चलती रहती है। बस हमें उन विशेष पलों का, विशेष समय का विशेष ध्यान देना है। चलिए कार्यक्रम में चलते चलते आज की कुछ खास खबर

0: समाचार पत्रों से। समाचार पत्र अमर उजाला के माई सिटी अंक के अनुसार जिले का पारा मंगलवार को 42 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में अभी राहत की गुंजाइश नहीं है। अवध विश्वविद्यालय को एडू रैंक में देश में 128वां स्थान मिला है व प्रदेश में 13वां स्थान मिला है। विश्वविद्यालय को देश के 876 उच्च शिक्षण संस्थानों में 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज्येष्ठ मास के छठवें मंगलवार को बड़े मंगल को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। समाचार पत्र अमृत विचार के अनुसार शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रदेश स्तर की रैंकिंग में अयोध्या ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है और गुप्तार घाट पर जलधारा के बीच बनेगा कुआं जिससे शहर को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। इसी के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब हम श्रोताओं की फरमाइशें शामिल करते हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में।
5: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
6: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
5: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
6: फोन नंबर 9161877347।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो चुका है आपके संदेश आपके गीत, और इस आपके संदेशों और गीतों को लेकर मैं कार्यक्रम में हाजिर हूँ आराधना। नमस्कार, स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, हर दिन हमें बहुत सारे संदेश प्राप्त होते हैं और उन संदेशों में हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक श्रोताओं की पसंद हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो उन्हीं श्रोताओं में से हमारा जो पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं फिल्म सागर से है, और इस गीत के लिए हमारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश की है खरगोन मध्य प्रदेश से, अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार। आप सबने पसंद किया है फिल्म सागर का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: क्या।
1: चलिए श्रोताओं, हमारे सभी श्रोताओं ने हमारे खरगोन मध्य प्रदेश से भेजे गए श्रोता की पसंद पर ये गीत सुना। अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं फिल्म बर्फी से, और गीत के लिए हमारे श्रोता हैं दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर। सुनिए श्रेया घोषाल और निखिल पॉल की मिलीजुली आवाज में फिल्म बर्फी का गीत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, चिंताएं हैं, भाग दौड़ हैं, लेकिन उन्हीं गंभीर पलों में से हमें छोटी छोटी खुशियां चुरा कर अपने को जीवित रखना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं, फिल्म है शागिर्द और आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत को सुनना चाहते हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। फिल्म शागिर्द का गीत।

जी हाँ दोस्तों, कोई इतने प्यार से मनाएगा तो कौन भला देर तक रूठा रह जाएगा। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत, कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में हम शामिल कर रहे हैं फिल्म बेशरम से। इस गीत के लिए हमारे पास पसंद आई है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे की। फिल्म का नाम है बेशरम, आवाजें अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की।

0: Hello.
1: Hello. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090. लाइव हेलो अयोध्या, आप सुनते हैं मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम होगा रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में अब हम शामिल कर रहे हैं फिल्म खानदान का गीत। सुनना चाहते हैं बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुनिए।

0: दोस्तों, हम भी आपसे हर दिन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मुलाकात करते रहते हैं और श्रोता भी अपने पसंद के गीत अपनी बातें हमें लेकर भेजते हैं। इसी बहाने हमसे आपसे दिल की बातें होती रहती हैं। चलिए, कार्यक्रम का अंतिम नगमा हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। फिल्म का नाम है पहचान। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से लिखते हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक। मुकेश की आवाज में ये गीत।
1: बस यही

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत से हमें दीजिए इजाजत।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार।
3: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।

0: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। अब हम श्रोताओं से सीधे जुड़ते हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या के माध्यम से।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: हेलो एंड वेलकम टू आवर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, जहां होती है बातें दिल से दिल तक। तो हमारे साथ जुड़िए हमारे फोन नंबर 7376804090 के साथ, और मैं हूं आपके कॉल्स का इंतजार करती हुई स्टूडियो में आराधना। तो अपने श्रोताओं से करते हैं हेलो और जानते हैं उनसे दिल की बात। हेलो हेलो हेलो जी, हमारे साथ श्रोता जुड़े थे लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम अपने अगले श्रोता का इंतजार करते हैं और उनसे भी कहेंगे हेलो। तो हमारा नंबर है 7376804090। कार्यक्रम शुरू हो चुका है हेलो अयोध्या, चलिए जुड़ते हैं हम अपने श्रोता के साथ, करते हैं हेलो। हेलो
4: हेलो
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम जान सकते हैं?
4: जी मैम, मेरा नाम हमरान बेग है, अम्बेडकर नगर आलमपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी बेग साहब, क्या हाल चाल है आपके?
4: जी मैम सब बहुत बढ़िया, आप अपने सुनाइए, आप भी ठीक है?
0: जी हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और आप सबके साथ जुड़कर हम और भी बेहतर महसूस करते हैं। जी तो बेग साहब, आप क्या करते हैं और सुनना क्या चाहते हैं आप, पहले ये जानना चाहेंगे?
4: ये मैं, मुझे सैयारा मूवी का गीत सुनना है।
0: सैयारा मूवी का गीत, क्या खास है इस फिल्म में?
4: मैम फिल्म उतना नहीं देखी, कुछ लाइनें सुनी हुई इसलिए सुनना चाहते थे।
0: जी तो
4: जी, आपके इधर का मौसम कैसा है मैम अभी? तो
0: जी अभी तो बहुत बहुत

0: बहुत गर्म है
1: अभी हमारे इधर तो, अभी ठंडा हो रहा है काफी, जो है मौसम ठीक है इस वक्त में, हवाएं पूर्वी चल रही है ना, बहुत मौसम ठीक है इस वक्त में।
0: जी जी जी, और आपके क्या शौक हैं, क्या जान सकते हैं?
1: जी मैम, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, इसी का शौक है।
0: जी, तो ये बताइए, जब समय समय पर क्रिकेट का प्रसारण होता है आप देखते हैं?
1: जी मैम।

0: जी मैम
1: जी, शौक रखते हैं तो जरूर देखते होंगे।
0: जी मैम, शौक भी है और रेडियो पर तो कमेंट्री बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। बस अब वर्ल्ड कप वगैरह की आती है तो उसके लिए रेडियो बचा करके रखते हैं।
1: ओहो, क्या बात है। तो कमेंट्री आप रेडियो पर ही सुनना पसंद करते हैं?
0: जी मैम, मुझे कमेंट्री रेडियो पर सुनना पसंद है। और हमारे गांव के लेवल की टीम भी खेलती है। तकरीबन 20 दिन में हमारा 3 फाइनल हुआ हमारे जिले में।
1: जी जी,
0: जीता है।
1: जी, क्या जी बात है। चलिए, तो आपका क्या सहयोग रहता है आपके जो लोकल आपके एरिया में क्रिकेट होता है?
0: जी मैम, टीम का सहयोग रहता है, बास मरतबा खेलते भी है।
1: जी
0: जी, दोनों शौक है
1: जी। चलिए, तो बेग साहब, हम एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर कोई और फिल्म सुनना चाहें गीत तो बताएं, क्योंकि ये फिल्म मेरे पास अभी फिलहाल नहीं शो कर रहा है।
0: अभी फिलहाल नहीं है तो पतंगा मूवी का सुना दीजिए मैम।
1: पतंगा मूवी बहुत पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट।
0: जी
1: जी, तो इस फिल्म को आपने देखा?
0: नहीं नहीं, फिल्म नहीं, हम असल में वो भी शौक दिए, सिर्फ गाने सुन लेते हैं कभी।
1: जी, गानों का शौक आप रखते हैं।
0: जी
1: जी, चलिए, तो पतंगा का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: वही रंगून वाला सुना दीजिए मैम।
1: मेरे पिया गए रंगून।
0: जी
1: जी, क्या बात है। अच्छा, उस जमाने में भी लोग विदेशों में जाते थे और वहां से जो उनकी यादें थी हमारे साथ, कितनी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई है ना।
0: जी,
1: जी। चलिए बेग साहब, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का गीत हम आप तक भेज रहे हैं और कार्यक्रम में ऐसे ही शामिल होते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: मैडम नमस्ते
1: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम जान सकते हैं?
0: जी मैडम, जी अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमदान
1: जी। जी अर्जुन जी, क्या हाल चाल है आपके?
0: हाल चाल मैडम बहुत बढ़िया। हाँ, आज तक थोड़ा राहत था गर्मी से
1: जी,
0: हवा हवा चल रही है।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत खुशी की बात बताई है कि आज थोड़ी गर्मी से राहत है।
0: बहुत ज्यादा राहत
1: जी, क्योंकि हम लोग तो जी अभी तो फिलहाल मैं स्टूडियो में हूँ, इसलिए मुझे बाहर का कोई मौसम का उतना।
0: मैडम आन मिलो सजना है
1: जी, आन मिलो सजना का गीत आप सुनना चाहते हैं जी, तो अपने बारे में कुछ बताएंगे अर्जुन जी?
0: अरे मैडम दुकान करते हैं, दुकान पर बैठे हैं
1: जी,
0: हवा आ रही है बढ़िया
1: जी। अच्छा ये बताइए कि जी,
0: आपको प्रोग्राम सुन रहा हूँ, प्रोग्राम
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, जब आप अपनी दुकान पर रेडियो चलाते हैं तो क्या आपके रेडियो को सुनने के लिए भी आपके कुछ ग्राहक आप तक आ जाते हैं?
0: जी जी आते हैं ना, माते अभी कल एक ग्राहक आए थे, वो भी करने लगे आपकी कान लग गई, हमने कहा भैया आप भी लगाइए, हो सकता आपकी लग जाए
1: जी। रेडियो सुनने के बहाने आपके पास ग्राहक आ जाते हैं
0: जी? मैडम रेडियो तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है
1: जी, बिल्कुल।
0: एक दुकान पे रखा हूँ, एक घर पे रखा हूँ
1: जी। जब आप दुकान पर होते हैं, दुकान पर सुनते हैं?
0: सुनता हूँ
1: जी, घर पर होते हैं, घर पर सुनते हैं, क्या बात है।
0: घर पे रहता हूँ, घर पे परिवार वाले सुनते हैं अपना
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: आपका प्रोग्राम चल रहा होगा घर पे भी, रेडियो चल रही
1: है जी जी जी। तो आप घर तक कोई सूचना पहुँचाना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
0: रेडियो के माध्यम से क्या सूचना पहुँचाएं मैडम, सब ठीक ठाक है
1: जी।
0: हम तो यही कहते हैं रेडियो बहुत अच्छी चीज है
1: जी,
0: जानकारियाँ मिलती है उससे
1: जी, बिल्कुल जी।
0: लोगों के बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें प्राप्त होती है, बहुत सरल समाज से हर चीज की सुविधा मिलती है
1: जी। जी अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और
0: जी
1: आपका गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप भी सुनिए, आपके परिवार वाले भी सुनेंगे, आपके आस पड़ोसी, आपके ग्राहक भी सुनेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।

0: पर दोस्तों हमें भी आपने आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है और बातें करना चाहते हैं आपसे, आप क्या सुनना चाहते हैं और आपके दिल में क्या है ये भी हम थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। चलिए हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो।

0: और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम हेलो अयोध्या चल रहा है 7376 80 40 90 के साथ। हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ होती हैं बातें दिल से दिल तक। चलिए जुड़ते हैं हमारे अपने अगले श्रोता के साथ, देखते हैं कौन है। हेलो
2: हेलो
1: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: राम गुप्ता बोल रहे हैं सामने रेलवे स्टेशन के पास से।
1: जी राम उजागर जी, क्या हाल चाल है आपके?
2: बहुत बढ़िया था मैडम, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, और क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी करते हैं मैडम।
1: खेती बाड़ी, तो खेतों में जब आप काम करते हैं उस समय आपके साथ रेडियो आपका साथी होता है?
2: इसमें जो है धान के बीज डाल रखे हैं।
1: जी जी, अच्छा जी राम उजागर जी, एक बात मैं जानना चाहूंगी कि आप खेतों में
2: मेरा नाम था बाबुल प्यारे।
1: जी बिल्कुल, हम आपको ये गीत सुनवाना चाहेंगे, लेकिन एक छोटी सी मेरी एक प्रश्न है, उसका जवाब आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। कि ये बताइए, क्या जब आप खेतों में अपना रेडियो चलाए रखते हैं, ठीक है जी, और कौन सा ऐसा आपका पसंदीदा गीत है जो अचानक जब आपके रेडियो पर बज जाता है तो आपका दिन बन जाता है, आपको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है?
2: मैडम पुराने गाने जितने भी है, सभी वो दिलीप कुमार के सबके जितने गाने हैं
1: जी जी,
2: हमको बहुत पसंद है
1: जी। कोई विशेष गीत जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, जैसे ये देश है वीर जवानों का है?
2: हाँ जी हाँ जी
1: जी, इस टाइप के गाने अगर बज जाते हैं तो वाकई में दिन बन जाता है,
2: बहुत अच्छा लगता है मैडम
1: जी। चलिए राम उजागर जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद का गीत आप तक हम पहुँचा रहे हैं, धन्यवाद।
2: थैंक यू।

0: आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक

0: श्रोताओं, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र इस समय आपके साथ सीधे जुड़ा है फोन कॉल्स के माध्यम से 7376-8090। ये है हमारा नंबर और करते हैं हम आपसे दिल से दिल की बातें। हेलो
1: हेलो। हाँ मैडम नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आप

0: आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है?
1: हाँ, कौन बोल नहीं रहा, बोल रहे हो
0: जी, बताइए कौन बोल रहे हैं?
1: किरदेव लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद अयोध्या
0: जी।
1: तो जी मैडम जी नमस्ते, वही बता गाना हम बताइए।
0: हाँ बिल्कुल बताइए गाना ही हम
1: बताओ, पिक्चर का नाम बता दी
0: जी, बोलिए।
1: वही साजन का घर,
0: साजन का घर का फिल्म। अच्छा मुझे लगता है आप कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? जी चलिए त्रिदेव जी, आपकी पसंद का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ फिर जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।

0: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
1: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
1: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: तो भाई श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9:55 हो चुके हैं। सिर्फ बहुत थोड़ा सा समय बचा है अपने श्रोताओं से जुड़ने के लिए, और हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं।

0: देखते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम नीरज पांडे है।
0: नीरज जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे
0: हैं? जी हम लोग बहुत बढ़िया हैं। आप लोगों के फोन कॉल्स आ जाते हैं तो हम लोगों को और खुशी होती है और मस्तिष्क हम लोगों का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए खैर, नीरज जी आप क्या करते हैं?
1: जी हम वर्कर हैं, राम जन्मभूमि में।
0: क्या बात है। तो नीरज जी, नीरज नयन के चरणों में आप अपनी सेवाएं देते हैं।
1: जी
0: क्या बात है, बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप की भगवान के श्री चरणों में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। चलिए नीरज जी, तो क्या सुनवाएं आज हम आपको?
1: जी एनिमल फिल्म का गाना,
0: एनिमल फिल्म जी। तो पापा मेरी जान, क्या बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा गाना है। और कोई खास वजह इस गीत को पसंद करने की?
1: जी अभी 2 साल पहले पापा जी वहीं पर
0: हो गए। ओहो जी, तो आप इस गीत को आप अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए ये गीत हमने आपके लिए प्ले कर दिया है, गीत को सुनिए और कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: चलिए श्रोताओं, इस मीठे से गीत के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम के अंतिम कॉलर को अपने साथ शामिल करते हैं। हेलो
1: जी,
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नाम बताइए। जी नूरजहां जी, क्या हाल चाल है आपके, और जल्दी से आप गाना बता दीजिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा और अपने समय का, बहुत ही अपने समय का क्या, आज भी बहुत ही पसंद किया जाने वाला गीत है। चलिए नूरजहां जी, हमने आपको आपका गीत प्ले कर दिया है, समय बहुत कम है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में आप फिर से कोशिश करिएगा, हम आपसे जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपने सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला स्वप्निल जी का और राम कुमार वर्मा जी का। चलिए कार्यक्रम का आज यही संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: मैं तुझे कल NCERT द्वारा

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर 10 बजने को है। आज हमारे साथ आकाशवाणी अयोध्या में आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे फेसबुक फरमाइशी श्रोताओं का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2 बजे का समय होगा कार्यक्रम गीतांजलि का। 2:30 पर हम जुड़ेंगे अपनी बहनों के साथ कार्यक्रम अंगना में। 3 बजे का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 3 बजे का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम की ओर।
1: इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी, मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, और मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास।

0: मद्रास में उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का सागरो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज्ड व्हिच लिटरली चेंज्ड माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे

0: या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राजकुशला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया। अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है आपको, डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
1: गुरुदत्त साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मान,
0: क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
1: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के।

0: ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिपोमेंट नहीं होगा, ये कैसे गाना होगा? तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने थे।
0: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत दिल को छू लेने वाली।
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी. तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं. तो वो इत्तेफाक से वो हो गई. तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पीछे नहीं चलने वाली.
1: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो.
0: नहीं मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना. उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म. फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट. और फिर वो फेस्टिवल में गई थी.
1: अच्छा वेदा जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है. डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अब्रार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं. पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है.
0: अभी देखिए अब्रार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना. तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में. क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे. और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे. मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अब्रार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए.
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी.
0: बिल्कुल जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं. तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल. तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा. तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं. तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक एक मैच्योर औरत का रोल है. जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे. तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें. नहीं बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड. खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं. तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए. लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी. मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ अच्छी लग रही हूँ. तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, यू नो यू लुक वेरी यंग. कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को. तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं. सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई. तो जब अब्रार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके ने कहा देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें. मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ. बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी. तो गुरदत्त उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया तो उनको ताजुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप. तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है. मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है. तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए. तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी. तो इसलिए मैंने किया.
1: तो इसका जिक्र चला है क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो.
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी. मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया.

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हैवी है और

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौधरी का चांद का एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी बड़ी खूबसूरत फिल्म और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है मायने रखती है खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के
1: नहीं क्या हुआ प्यासा जब शुरू हुई क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम उसको सॉल्व करती है अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे तो वो समझाते थे वो था फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे जैसे CID बनाई सस्पेंस थ्रिलर थी फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी फिर साहेब बीबी खान बड़ी वैरायटी हुआ करती थी वो बड़ी अच्छी बात थी और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद ने डायरेक्ट की एम सादिक साहब ने की तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा यू नो और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ है सही बात थी तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में
1: नहीं मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी तो वो हमको लेनी पड़ती है
2: सेल्यूलॉइड के सितारे

0: आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
2: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
2: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे। देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। वही मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगा, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप।
2: खोया खोया चांद।

0: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गोल्डी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे. कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की, और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बापरे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वेला जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रोजी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था. क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है. और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है. ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली. तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए. तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए. फिर भी मेरे ख्याल से गलत थी, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा. मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा.
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा. Exactly. आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला.
1: बिल्कुल सही है.
0: कमल के लिए भी मिला. कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें

0: किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा इन्हें इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था। वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
0: डाकुओं की समस्या पर वो फिल्म थी।
1: हाँ।
0: सुनील दत्त साहब के साथ में।
1: हाँ जी।
0: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाते रही ना।
1: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो। और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
0: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था,

0: एक और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषा और अमिताभ बच्चन साहब खास तौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी

0: ये सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बिचारेगा, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग हमें इन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
0: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है, और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने। तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारो, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा का वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अग्नि,

0: महिदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है. फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील, जब आप मूवी देखते हैं, कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके नो, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं. हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ, और आपके मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास. उससे एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं. कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए,

0: लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
1: एक एनर्जी से भरे हुए
0: बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने जब, खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है.
0: बिल्कुल.
1: और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है. और फिल्में बनाए जा रहे हैं, तो अभी उससे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जोश जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में यश जौहर के काम नहीं किया. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम.
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें. आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी. भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम. हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की. इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने.

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूँ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए। लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को, डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा के दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी।

0: लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को, बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है, कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करें?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज, अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा

0: है कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है।
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
0: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
1: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
0: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हैंडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा

0: से कट्स लगे हुए थे इस पर, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हैं और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी

0: जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी। और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया

0: भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
1: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से, कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, DBT के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस UPA सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज PM का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज PM वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है UPI के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरफ ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फक्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
0: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
1: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
0: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है।
1: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
0: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी।

0: खतरा लग रहा है क्या अभी?
1: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
0: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजॉर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
0: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
1: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहां दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
0: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
1: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
0: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल की लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष।

0: आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार के नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर बोल रहे हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: श्रोताओं सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोक गीत अवध राज मौर्या और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अवधराज मौर्य की आवाज में लोकगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम लोकगीत आइए सुनते हैं शीतला प्रसाद की आवाज में।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दिन के 1 बज रहे हैं, प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त लक्ष्मी। कहते हैं कि शब्द जहाँ खत्म होते हैं संगीत वहाँ से शुरू होता है। आज का हमारा यह खास फेसबुक फरमाइशी प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सिर्फ गानों का सफर ही नहीं बल्कि आपकी यादों और फरमाइशों का हिस्सा है जो आपने हमसे साझा की है। आज का यह कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ, तो चलिए शुरुआत करते हैं बातों और फरमाइशों का ये खूबसूरत सिलसिला आपके पसंदीदा गीत के साथ।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कि शुरुआत करते हैं फिल्म साजन से, जिसके लिए हमें फरमाइश भेजी है भागवत लाडला जी सागर लखनऊ और मध्य प्रदेश से, राशिद हुसैन अंसारी जैन मंदिर कुरावली से, महाराज केतनपुरी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, अशोक डाले कुम्हार गली श्रीरामपुर से, सरवण कुमार प्रजापति गांव जलालापुर जिला सहारनपुर से।

मुखी लाल मौर्य, पुराना शहर बरेली से राजेश वर्मा, सामली छत्रपति संभाजी नगर से बीआई धाकर, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विष्णु टेलर, भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से सुदर्शन शाह, पद्मशाह नेपानगर से योगेश सरवा, वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से लालगिरी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से, नारायण लाल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से, इंजीनियर फैजल ईमान हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, अरुण कुमार मालवीय दर्ज बड़ी गए बी चौराहा बनारस से, शेख थियाउर रहमान मानपुर साबित मुरादाबाद से, मशर हसन कुमार हेड़ा सहारनपुर से, आफ्ताब अंसारी गंज डिडवाना उत्तर प्रदेश से, विक्रम मालवीय गुलबालोद आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, शिव चौहान बाबा कुटी रायगढ़ से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साजन का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजपूत से, जिसके लिए हमें फरमाइश भेजी है गजानन येले सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से, निसार सलमानी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, राधा नामदेव सहारनपुर से और मशरूर हसर कुमार हिड़ा सहारनपुर से, जाकिर मुंसरी कालपी वाले बाजार रोड मुंगीसा रोड से, फरगू राम यादव संबलपुर कोको से, माफ करिएगा कांकेर से, राहुल मनवर शाहू नगर यवतमाल से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराओ से, पंजली नावकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, राजेश कुमार वर्मा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, प्रवीण शर्मली कवर कॉलोनी बढ़ता खरगोन मध्य प्रदेश से, वेद प्रकाश मिथा हनुमानगढ़ राजस्थान से, सुरेश गजनेजा जलालाबाद वेस्ट से, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से, उत्तराधिवाकर पीपरपारा पालचुआ मुंगेरी छत्तीसगढ़ से, नरेश मल्होत्रा निट्टू खेल बाजार पानीपत से, विजेंद्र विश्वकर्मा पखेला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से, जगमोहन सिंह प्रजापत लहोडडा जिला बागपत से, रविंद्र सिंह छाबड़ा नई दिल्ली टैगोर गार्डन से और अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राजपूत का ये गीत। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है नीलू मेघ राजधानी रायपुर से, दिवाकर खान रघुवीर नगर से, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, कमर सहनी नागपुर महाराष्ट्र से, संजय ढींगिया कस्बा उघैती से, शहरुन्नूर अंसारी ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली बरेली से, विजय सरलकर मौताला महाराष्ट्र से, राजेश वर्मा लालकुटी रुड़की कैंट से, शुभचंदर बजाज इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है, कुंवर कृपाल सिंह परिहार गुलवालोद तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, अरुण कुमार निषाद, भगवानदीप निषाद, प्रदीप निषाद और रामजीत निषाद गुप्तारघाट अयोध्या से, बालकृष्ण नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर भाटा से, सुभाष कुदारा हीरावली फाजिलका पंजाब से, आरसी कामड़े जवाहर नगर दुर्ग से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, ओम बागरिया गांव बांडीवाला फाजिलका से, जी के परमार गांधीनगर गुजरात से, सोमदत्त नाभा जिला पटियाला पंजाब से, रमेश कुमार पटेल नटाट मलोट से, मणिराम पाल ग्राम पोस्ट पिरखेरा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, नंद कुमार ठाकुर चरौदाबार नवापार अभारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अनाड़ी का ये गीत। तो आइए

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है किशन सपकाल शास्त्री नगर बीर शहर गांधीनगर चौर बाड़मेर से, पब्लिश पवार गांधीनगर चौर से, राम देवरा से दिनेश चौहान डांगरी से, बाबूराम जयपाल शंभू दयाल गांव जाखूद से, संदीप कुमार गुराया चौक जालंधर से, झग्गर राम साहू नागरकोटा कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, राम कुमार रेवाड़ साधु शहर रेवाड़ से, रिजवान खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, धर्मेंद्र शिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, नंद कुमार ठाकुर ग्राम चरादाबाद नवापार जिला छत्तीसगढ़ से, श्री कृष्ण बाठे धांडी नांदुड़ा महाराष्ट्र से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, मोहम्मद फारूक शेख गणेशपुर गंज डिडवाड़ा एटा उत्तर प्रदेश से, हुकुम कर्माकर बरंडी मध्य प्रदेश से, जगदीश धाकड़ आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। इन सभी ने सुनना चाहे फिल्म बैराग का ये गीत।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म उपहार के लिए। इस फिल्म के गीत को सुनना चाहा है बब्बल मल्होत्रा मोहाली पंजाब से, सोमनाथ यादव ग्राम पोस्ट शंकरपुर उसामा बदायूं से, सैयद यूनुस आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से, एसपी गौतम गंज डुडवाड़ा उत्तर प्रदेश से, शाजी भोकड़े हिंगोली महाराष्ट्र से, विनोद परासा ग्राम खुखारवली श्री गंगानगर से, नंदकिशोर घाटे बीट शहर महाराष्ट्र से, बनवारी जयपाला श्री गंगानगर राजस्थान से, सुरेश जायसवाल जमानिया जिला गाजीपुर से, लक्ष्मण सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से, राजेंद्र नागर व बटिंडा रोड मंडी डबवाली से, राघव बघेल लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, ताज अंसारी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, जयपाल यादव इंद्रपाल यादव ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से, राजू माठे तहसील जलगांव जामोद खामगांव महाराष्ट्र से, ग्राम उमरा अटाली खामगांव से, बीके छिंद्र असम से, अशोक सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल से, अंकुश अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म उपहार का ये गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है बोधराज को। खुरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, तुलसी मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से शाहदरा दिल्ली से, सतीश अनेजा रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से, उत्तम भगत पाकुड़ झारखंड, स्वर्णगील गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, सत्यवीर सिंह बिचारनिया गांव खाकिया ठाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से, ताज अंसारी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, तुलसी मस्कीन छुप पंचकुला छत्तीसगढ़ से, माफ करिए चंडीगढ़ से, कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, गगनदीप थाणी गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, मोहम्मद इंतजार और वकील अहमद गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से, शहनूर नूर अंसारी ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली बरेली से, ततार सिंह गोविंदपुरा सिकरगढ़ राजस्थान से, रणधीर गुप्ता उखला संगम बिहार नई दिल्ली से, उत्तम सिंह जंघेल आर्य नगर कोहका भिलाई से, तेलंगाना निजामाबाद से एस की अलबख्श हरजिंदर छिंदा गांव नथाना पंजाब से, बी कमल मजनू कटिल्ला सतना मध्य प्रदेश से, नरेन नेतम बड़ बुडवा पथरिया छत्तीसगढ़ से, माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, सुखविंदर सिंह चौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से। इन सभी ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, सुमेंद्र यादव ग्राम शंकरपुर सावा जिला बदायूं से, टीडी मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, केआर साहू देवरी भाटापारा से, चंदलाल पटवा ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, सुभात गुदारा गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से, राजकुमार डूडी गांव फरासी जिला हिसार से, राजेंद्र नारंग बाटिंडा रोड मंडी डबवाली से, मुकेश गोस्वामी उच्च भट्टी बिलासपुरा छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र शर्मा जेटली कल्ला नौर से, ओम प्रकाश राय कुटवा नारायणपुर से, संदीप कुमार चौक गोराया जालंधर से, ओम बागड़िया इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है, अजित कसाना लदावली मुरादाबाद से, श्याम सुंदर माहेश्वरी फारबिसगंज बिहार से, राजेंद्र दासवाड़ा जिला नांदेड़ छिपुरगा मॉल से, माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, विनोद लखनपाल रावर करनाल और राजपाल आदर्श नगर से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खिलाड़ी का ये गीत।

Azan Kumar Singh, Shrikashi Vishwanatham, Varanasi से, नाना लाम से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, धीरज गुप्ता उगहती कस्बा से और मुकेश यादव गोंडा उत्तर प्रदेश से, शुभचंद्र बजाज कालका से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट चौखुंटी बुलंदशहर से, गोविंदपुरा सीकरगंज राजस्थान से दातार सिंह, शुक्रा नायक हरसावा झारखंड से, डूंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजाबिये, राघव बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से और नंद किशोर घटे बीट शहर महाराष्ट्र से, तुलसीदास छुक पंचकुला छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत साहू रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, सतीश अनीजा चंडीगढ़ से, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, सैयद उनूस जालाना मराठवाला जी शुभ चंद्र बाजार से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म डॉन का ये गीत। तो ये सुनते हैं सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: घर से निकलते समय सिर ढककर रखें, इसके लिए कपड़े, हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
0: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
1: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
0: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
1: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर ना जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
0: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें, ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
3: जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
4: ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
3: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आपसे मिलाता है, एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
4: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
3: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
4: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
3: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909।
0: श्रोता, ये कार्यक्रम गीतांजलि की शुरुआत करते हैं उस्ताद अहमद हुसैन गाए इस गीत के साथ।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में।

सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। प्रेमी थे लोग तो शादी करना चाहते थे, तो अपने माँ बाप के पास ले गया लड़का, लड़की को मिलवाया कि सब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, इसकी जन्म पत्री मैच कर लेंगे। वो बोले भाई ये शादी तो नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वो लड़की तुम्हारे से बड़ी है 2 साल, तो इसमें क्या है, 2 साल के बाद शादी करेंगे। एक भाई साहब ने एड निकाला पेपर में, अच्छे थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, कि आई वांट टू गेट मैरिड, और एक ही शर्त है कि डाउरी में आई वांट ए ट्रैक्टर, और नीचे जो है अंडरलाइन किया हुआ था, प्लीज सेंड द फोटोग्राफ ऑफ द ट्रैक्टर इमीजिएटली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण

0: तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए वो सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूँ कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से

0: कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जरडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच

0: व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: बेटी आज जरा अपन बचपन याद करा, गांव के वो चौपाल का याद करा, घर की वो अंगना का याद करा, नीम की छांव और सखियां संग घंटों चली बतकही का याद करा। वो बतकही के वो समय बितावे खातिर ना रही, बल्कि दिलन का जोड़े के जरिया होत रही। तो सखी सहेली आप सभी से जुड़े की तय हाजिर रही आज आपके साथ है आपकी सखी मितु। आप सभी का हमार प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली, प्रीत के जो पौधा है ना, वो बतकही से सींचा जाता है, यानी प्रेम आपनपन और रिश्तन की हरियाली तबे बनी रहे ना जब संवाद के पानी से उका सींचा जाए। बातचीत केवल शब्दन के आदान प्रदान नहीं है, बल्कि दिल से दिल का भी जोड़त है। और यही संदेश लेके आज पूरा देश मनावत है सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

0: देखो से किसे लिए आज दुनिया ना बहुत तेजी से बदलत है। मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से दूर बैठा लोग भी एक दूसरे से जुड़ा है। मतलब जुड़ाव खाली साधन से नहीं बल्कि मन से भी होएगा चाहिए। अब देखो सखी, सभ्यता के मतलब केवल पुरानी परंपरा ना होए बल्कि जीवन जिए के जो तरीका है वो है। हर समाज के अपन संस्कृति होते, अपन भाषा होते और अपन रीति रिवाज होते। और जब भाई हमरे सभे एक दूसरे की बोली का, भाषा का, संस्कृति रीति रिवाज का समझित है, ओके सम्मान करित है, तभी तो आपस में विश्वास भी बढ़त है और प्रेम भी उपजत है। और वैसे भी न सकी, हमार काकी कहत रही है, द्वी बोलने ही के सौ झगड़ा दूर कई देते है। तो भाई अगर केहू से कभो मनमुटाव हो भी जाए तो समय रहत हमरे सभे का अपन आपसी भेदभाव का मिटाए के एक दूसरे से मिलजुल के रह के पूरा प्रयास करेगा चाहिए। और आज जरूरत भी है घर माँ, परिवार माँ, समाज माँ और अपने देश से दूसरे देश के बीच माँ संवाद बना रहे। और ई दिवस भी हमका यही सब तो सिखावत है कि भाषा हो चाहे पहनावा, खान पान, चाहे सब कुछ अलग अलग होए, मुला संवाद और सम्मान हम सब माँ एक जैसन ही होता है। और यही संवाद और सम्मान हम सभी का एक सूत्र माँ बांधे भी रखत है। और अब बस इतना ही कही थे, बोली भले बदल जाए मन के भाव ना बदले, बोली भले बदल जाए मन के भाव ना बदले, संवाद की डोरी जुड़ जाए तो दूरी अपने आप पिघल जाए। सकी अभी देखो हम कह रहे ना थोड़ी देर पहले कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदलत है। मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से मनी दूर बैठा भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हाँ अब जमाना देखो तकनीक का हो गया है। आज मोबाइल चलावे से लेके ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ऑनलाइन खरीदारी होता है, बैंकिंग हो या सिलाई कढ़ाई हो, सब कुछ देखो तो ऑनलाइन यानी मोबाइल पे ही चलत है। खेती बाड़ी तक के काम जो है देखो लोग मोबाइल से सीखत हैं। छोट छोट व्यापार भी तकनीक के सहारा आसानी से हो रहा है। तो सखी सहेली, तकनीकी शिक्षा केवल नौकरी पावे खातिर ही ना है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनावत है। भाई हम घर बैठे हमार जोन भी कला है उका जो है अच्छे से अपने मोबाइल के माध्यम से हम दूसरे तक भी पहुंचा सके थे। और उसे न सिर्फ हम पहुंचा सके थे बल्कि चार पैसा भी हम कमाए सके थे। और आज हमार गांव के सखी सहेली भी मोबाइल से ऑनलाइन सामान बेचत हैं, नवा नवा हुनर सीखत हैं और परिवार के आमदनी भी बढ़ावत हैं। तो हम सब तो सभी सखियों की वाले से बस यही कही थे ना कि सीखब तकनीक के ज्ञान बढ़ी परिवार और देश के मान। बिल्कुल सही है सखी कि जितना ही हम तकनीक के चीजन का सीखब आगे बढ़ब उतना ही हमार देश के सम्मान मान सब कुछ आगे बढ़े। तो भाई हमरे सभी का तकनीकी शिक्षा लेके आत्मनिर्भर जरूर बनेगा चाहिए। और तकनीक के विकास तो देखो ना सखी हर क्षेत्र में हो रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी विकास भी बहुत ज़्यादा बहुत तेजी से बढ़त है, जिससे कोनो भी समस्या के समाधान जो है बड़ी आसानी से हो लाग है। तो सखी सहेली बात स्वास्थ्य के होते हैं तो आज दांतों की बाइट की समस्या कारण एवं समाधान जैसन विषय लेके आई जिसके बारे में जानकारी देते हैं डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, जो कि दंत चिकित्सक हैं और इनसे बातचीत करी हैं सरस्वती पाठक बनी। तो चलो इस जानकारी के माध्यम से अपनी समस्या का जाना और समझा जाए।
1: श्रोताओं, सुंदर दिखना हर व्यक्ति की चाहत होती है। सुंदर दिखने के लिए चेहरे में हर एक अंग का सही प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। ऐसे में हमारे दांतों का भी व्यवस्थित होना और मुख की सुंदरता यानी हमारे जो दांत हैं, हमारे ओंठ हैं, उनकी सुंदरता भी हमारे चेहरे की सुंदरता में मायने रखती है। लेकिन यदि अगर दांतों में कोई समस्या हो तो चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है। ऐसी ही एक समस्या आती है दांतों में, दांतों की बाइट की समस्या। ये बाइट की समस्या क्या है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण हम कैसे करेंगे, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दंत चिकित्सक जिला चिकित्सालय अयोध्या से डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: जी धन्यवाद।
1: जी डॉक्टर, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया बाइट की समस्या, सबसे पहले यही बताएं कि ये बाइट की समस्या है क्या।

0: उबड़ खाबड़ है नहीं। तो इस टाइप के सात प्रॉब्लम्स होती हैं। इनमें जो मेन प्रॉब्लम्स है वो एक तो क्रॉस बाइट होता है।
1: जी, क्या है ये क्रॉस बाइट?
0: क्रॉस बाइट होता है कि सामान्यतया जो है ऊपरी जबड़े के दांत बाहर की तरफ बैठते हैं और निचले जबड़े के दांत अंदर की तरफ बैठते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: मगर ऐसा होता है कि नीचे जबड़े के दांत बाहर की तरफ हो जाते हैं और ऊपरी जबड़े के दांत अंदर की तरफ हो जाते हैं।
1: जी।
0: तो इसको बोलते हैं क्रॉस बाइट।
1: जी,
0: मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हुआ।
1: जी, बाकी आपने सात तरीके के बताए, तो मैं चाहती हूँ कि सातों पर ही एक बार हमारे श्रोताओं को जानकारी दे।
0: जी, दूसरा जो पॉइंट है वो ओपन बाइट होता है।
1: जी,
0: मतलब ऊपरी दांत और नीचे वाले दांत मिल ही नहीं रहे हैं, उनमें गैप रह जा रहा है। ठीक है। तीसरा होता है अंडर बाइट। अंडर बाइट मतलब होता है कि नीचे वाला जबड़ा आगे चला आया और ऊपर वाला उसके अंदर हो गया।
1: जी,
0: तो इसको अंडर बाइट कहते हैं।
1: जी,
0: ठीक है। और चौथा होता है कि क्राउडिंग हो जाए बहुत, मतलब दांत जबड़े का साइज छोटा है और दांत बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, अपने पोजीशन पर ना निकल के डिफरेंट पोजीशन पर निकल जाए।
1: जी, दांत एक के ऊपर एक निकलते चले जाए।
0: जी जी जी
1: जी,
0: एकदम जस्ट बगल में कोई। और पांचवा होता है कि दांतों में जगह बहुत हो, स्पेसिंग हो, मतलब सटे ना हो दांत।
1: जी,
0: तो भी देखने में खराब लगता है। छठवां होता है इसका कि जो है डीप बाइट, मतलब ऊपरी दांत नीचे वाले दांत पे कुछ ज्यादा ही डीप बैठ रहे हैं।
1: जी,
0: मतलब नीचे वाले दांत दिखते नहीं है, ऊपर वाले दांत ऐसे बैठते हैं कि नीचे वाले दांत नहीं दिखते या बहुत कम दिखते हैं, इसको डीप बाइट बोलते हैं।
1: जी,
0: सातवां पॉइंट है प्रोट्रूजन, मतलब ऊपर के दांत बहुत आगे भागे रहते हैं, वर्टिकली ना निकलकर, मतलब जैसे निकलना चाहिए बल्कि आगे की तरफ निकल आते हैं।
1: जी,
0: तो ये सात टाइप की जो है बाइट डिस्टर्बेंसेज होते हैं।
1: जी डॉक्टर, इसके कारण क्या है इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि अगर ऐसी समस्या किसी व्यक्ति को होती है तो उसको क्या क्या समस्याएं अपने सामान्य जीवन में झेलनी पड़ती हैं।
0: जी, अगर किसी को बाइट की समस्या होती है तो पहली बात तो यह है कि शब्दों का जो प्रोनंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उसमें फर्क पड़ता है। अगर बाइट दांतों सही नहीं बैठेगी तो शा को सा कहेगा या ला को लॉ कहेगा, रा को रा कहेगा, बहुत लोग वी को भी कहते हैं,
1: यानी आवाज जो है वो साफ नहीं निकलेगी।
0: जी, साफ नहीं निकलेगी और अच्छे से नहीं निकलेगी।
1: जी,
0: उसमें कहीं ना कहीं भर्राहट या कहीं ना कहीं हैवीनेस इन वॉइस रहेगी।
1: जी
0: जी,
1: और किस तरह की समस्या?
0: और दूसरी बात, इंसान का प्रोफाइल गड़बड़ दिखेगा, उसका जो फेसियल लुक है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो भी अच्छा नहीं रहता है।
1: जी,
0: ठीक है। तीसरी बात यह है कि जबड़े की जो बनावट है वो भी देखने में खराब लगती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मेन चीज अपीयरेंस, प्रोफाइल है नहीं, और वॉइस।
1: जी,
0: कई चीजों को इफेक्ट करता है।
1: जी, खाने पीने में भी समस्या आती है?
0: जी बिल्कुल, हाँ बहुत सही। खाने पीने में तो समस्या आती ही आती है, दांतों को साफ करने में भी समस्या आती है। आप ब्रश ठीक ढंग से, जिसको होता है बाइट सही नहीं होता है, उनकी ब्रशिंग ही नहीं, दांत गंदे रह जाएंगे, जबकि वो कोई भी गलत हैबिट नहीं होती है। और ब्रशिंग तीन बार चार बार करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे दांत साफ ही नहीं होते।
1: जी,
0: तो उसका कारण है कि बाइट सही से नहीं बैठती है। और खाना खाने में भी दिक्कत होती है, कभी जीभ कट जाएगी, कभी गाल कट जाएगा।
1: सारे आपने सात प्रकार बताए हैं, इसका कारण क्या है? बचपन की कोई ऐसी गलती या फिर ये अनुवांशिक है कि मान लीजिए किसी के यहाँ पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसे दांतों की समस्या रही है तो आगे चल के पीढ़ियों में चलती जा रही है?
0: ये जो आपने तीन चीज बताई, तीनों चीज है।
1: जी,
0: एक तो बचपन की गलतियों से है, दूसरा आनुवांशिक होता है ये।
1: जी बिल्कुल।
0: तीसरा यह है कि कभी चोट चपेट लग जाए तो जबड़े का जो है स्ट्रक्चर बिगड़ जाए।
1: जी,
0: तो तीनों कारण होते हैं।
1: जी, आनुवांशिक तो हमारे वश में नहीं है, उसका तो हमें उपचार ही कराना पड़ेगा, लेकिन जो बचपन की गलतियां हैं उस पर थोड़ा सा बताएं।
0: बचपन की गलतियां हैं जैसे कुछ बच्चे जो है थंब सकिंग करते हैं।
1: जी,
0: अंगूठा चूसते हैं। ठीक है, तो अंगूठा चूसने क्या होता है कि जो तालू होता है वो पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है और गहरा हो जाता है, और बाहर ऊपर के दांत बाहर निकल आते हैं।
1: जी,
0: ठीक है। कुछ बच्चे जो है मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते, हो सकता है उनके नाक में कुछ प्रॉब्लम हो या एयर पैसेज में कुछ प्रॉब्लम हो, बट अल्टीमेटली अगर वो मुंह से सांस ले रहे हैं तो भी उनके दांतों में विकृति यानी बाइट जो है वो गलत होने की संभावना रहती है।
1: मुंह से सांस लेने में सोते वक्त या हमेशा?
0: नहीं, सोते
1: सोते वक्त खासतौर पे।
0: जी
1: जी।

0: तो ये तो रही बचपन की बात, अनुवांशिक की जो हमने बात की वो तो हमारे वश में नहीं है, या चोट चपेट की बात आपने जो कही वो भी हमारे वश में नहीं है, वो तो उपचार के बाद ही सही हो सकता है। उपचार क्या है इसका?
1: इसका उपचार जो है तीन तरीके से है
0: जी।
1: एक तो पारंपरिक तरीका है कि दांतों में जो है एक प्लेट में तार फंसा के और पहना दिया जाता है बच्चों को कि ये पहनते रहें और धीरे धीरे दांत अंदर हो जाता है
0: जी।
1: ठीक है। दूसरा जो तरीका आया वो ब्रेसेस टेक्नोलॉजी आया कि दांतों में ब्रेसेस लगा दिया जाता है, वो अपने आप दांत को अलग अलग दांत पे अलग अलग फोर्स सेट किया जाता है कि इतना बल लगेगा तो दांत इतना खिसकेगा
0: जी।
1: तीसरी जो टेक्नोलॉजी आई है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है एलाइनर्स टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: एलाइनर्स में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट टाइप के एक जो है पीवीसी का ढांचा बनेगा, उसी को हमेशा पहने रहना पड़ेगा और उसी से दांत जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सही हो जाते हैं
0: जी।
1: जो और चौथा भी तरीका है लास्ट जो सर्जरी करना पड़ता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछने ही जा रही थी आपसे कि सर्जरी के क्या ऑप्शन है। अगर कुछ स्थितियों में वो तो डेंटिस्ट हमारा डिसाइड करेगा कि किन स्थितियों में सर्जरी की आवश्यकता है और क्या स्थिति है जिसमें सिर्फ हम अलाइनमेंट करने से ही ठीक हो जाएगा जी। एक बात आती है जो ओवर क्राउडिंग वाली, ओवर क्राउडिंग में क्या दांतों को निकालना पड़ता है या क्योंकि एक के ऊपर एक दांत है तो एक दांत एक्स्ट्रा है, जाहिर सी बात है
1: जी।
0: दांतों को हटाना पड़ेगा या फिर उनको भी अलाइनमेंट करके सही हो जाएगा?
1: नहीं, अगर जगह है तब तो अलाइनमेंट करके सही हो जाएगा, लेकिन अगर जबड़ा ही छोटा है और दांत ज्यादा है तो फिर जो है दांत उखाड़ने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं
0: जी। जो गैपिंग की समस्या आपने एक बताई थी, वो गैपिंग की समस्या में क्योंकि दो दांतों के बीच में बहुत थोड़ी सी जगह होती है, मतलब एक और दांत आ भी नहीं सकता है, ऐसे में क्या करते हैं?
1: ऐसे में या तो एक लाइट क्योर लेजर टेक्नोलॉजी होती है, उससे दोनों दांत पे हल्की हल्की लेयर जोड़ देते हैं
0: जी।
1: ठीक है, तो गैप बंद हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि दोनों दांत पे कैप लगा दिया जाए, ठीक है, और कैप का साइज बहुत हल्का हल्का बढ़ा दिया जाए तो भी गैप होते हैं। तीसरा तरीका यही होता है, ये आपका ब्रेसेस
0: जी,
1: कि ब्रेसेस दांतों में लगा देते तो दांत धीरे धीरे खिसकते खिसकते पास आ जाएंगे।
0: डॉक्टर, उपलब्धता की अगर हम बात करें, क्योंकि ये उपचार ठीक है तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शहर में उपलब्ध है कि नहीं? हम अयोध्या शहर में रह रहे हैं, हमारे अयोध्या शहर में क्या उपलब्धता है या बाहर जाना पड़ेगा?
1: देखिए, अपने अयोध्या शहर में गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिलहाल बाइट करेक्शन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, KGMU में है। और प्राइवेट सेक्टर में लोग करते हैं
0: जी,
1: कि रिमूवल अप्लायंस है, ब्रेसेस टेक्नोलॉजी और जो लास्ट वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एलाइनर्स वाली, वो भी शायद अवेलेबल है
0: जी। जी, सरकारी में अभी हमें जाना पड़ेगा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में।
1: हाँ, KGMU में। KGMU में भी एलाइनर्स टेक्नोलॉजी जल्द ही आने वाली है
0: जी।
1: हाँ, मैंने एक वीडियो भी डाला था फेसबुक पेज पे, वहाँ मशीन खरीदने की मंजूरी मिल गई है, हमें लगता है 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा एलाइनर्स
0: जी। डॉक्टर, चलते चलते आप हमारे सभी श्रोताओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि कुछ गलतियां बचपन में ही होती हैं जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं, तो उन पेरेंट्स को जो इस भेंटवार्ता को सुन रहे हैं या उनके घर में आनुवांशिक है ये समस्या, तो उन्हें क्या संदेश देंगे?
1: देखिए, जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं, हम उनको यही संदेश देंगे कि बच्चों को ब्रशिंग ठीक से कराएं, क्योंकि दांत असमय गिरने से भी बाइट करेक्शन की प्रॉब्लम होती है
0: जी,
1: कि समय से पहले गिर जाना या बहुत ज्यादा दिनों तक लगे रहना दूध के दांत, इससे भी बाइट में प्रॉब्लम आती है। दूसरा यह है कि जो बैड हैबिट्स हैं जैसे थंब सकिंग है या माउथ ब्रीदिंग है, इस पे वो नियंत्रण रखे। अगर बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसको मना करें, समझाएं, और 1.5 साल के बाद अगर अंगूठा चूसता है तो उसको डॉक्टर्स को या तो डेंटिस्ट को दिखाएं या फिर बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं
0: जी। बिल्कुल, डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला जी, आप दंत चिकित्सक हैं जिला चिकित्सालय जनपद अयोध्या में, और आपने हमारे सभी श्रोताओं को दांतों की बाइट की समस्या, कारण और निवारण पर इतने विस्तृत जानकारी दी। सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो सखी, अभी भेंटवार्ता सुना गए, अगर बाइट के देखो कोनो भी समस्या हो ना तो समय रहते जो है इलाज जरूर करें, और बात पत कही आगे और हुई मुला छोटे से अंतराल के बाद।
3: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
6: और व्हाट्सएप नंबर 8303211 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
5: तो छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ आपके सखी मीतू। सखी सहेली बात बात कही तो बहुत हो गई और हमें मालूम है कि हमारी सखी इंतजार कर रही थी गौन ही सुने के, तो चलो लेके आई उनके लिए अमुआ और महुआ के झूमे डरिया। चलो सुना जाए।

बना हुआ बिस्कुट नमकीन सत्तू साथ ले जाएं और जाए से पहले ना अपने साथ ही छाता टोपी धूप के चश्मा जरूर ले जाएं और सूती कपड़ा का ही प्रयोग करें। साथ ही मसकी सेलिना जरूरी दवाई जोन होते ना वो अपने वो मन जरूर रख लें अपने जोन सामान ले जाते हैं। बच्चन और बुजुर्गन का समय समय पे पानी पियावत रहें और थोड़े थोड़े समय पे उनका आराम भी जरूर करें दें। तो भाई इस सब सुझाव के साथ चलो सुन लें जाए बढ़िया से गीत और

0: सखी सहेली यही गीत के साथ है ना आज के कार्यक्रम से विदा ले के समय हो गया है। आगे फिर कोनो दिन यही कार्यक्रम मिला जाए, तब तक के लिए मीतू का दे अनुमति नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
1: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: है। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो तो श्रोताओं चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश।

0: हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक भौगोलिक सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी
2: हुँ?
1: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओ।
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा
1: जी।
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ
0: जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: Oh, my God.

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
0: ओ,
1: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
2: अच्छा, बिल्कुल।

0: बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
1: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
1: जी।
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ ये ठीक रहेगा, तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
1: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: है। हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में है, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नीरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए

पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM पर। आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती केंद्रीकृत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ, हो, हो, हो। लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम
0: है। बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना निहा। कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी

0: पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई, ये सब्जियां नहीं होना जैसे कद्दू बैंगन खिलकी लौकी उनके गले नहीं उतरती, श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, जो मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं।
0: हाँ वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं वैसा नहीं,
1: उसे करेला भी दीजिए,
0: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
1: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
0: हर
1: आप जो खाते
0: थोड़ी
1: सब थोड़ी थोड़ी दो। अगर उसने मना किया बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं इधर, हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
1: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने समझदार इंसान है,
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहणियाँ हैं वो बड़ी खुश होगी।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया
0: संवाद।
1: वही
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है। सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना?
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं। इसलिए
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें, और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे। और दो सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है? छोटी छोटी फरमाइशें तो घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने के कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल

0: पूरा खाना शांति से खा लेते हैं, कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले, ऐसा नहीं। बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथी लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे। इस तरह से इन्हें मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें,
1: गाना सुन लेते हैं। संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के. मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए.
1: तो बताइए.
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी. ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है. इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल. बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले. कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं. तले हुए परवल को अलग निकाल लें. बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं. अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें. इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं. धीमी आंच पर मसाले को तब तक भूनें जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी ही खुशबू ना आने लगे. अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8-10 मिनट पकाएं. ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें. अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे.
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी. नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना चाहिए.
1: हो गया ना. एक हमारे साथी ने लिखा है सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है. सिंधी साई भाजी तैयार है. पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है.
0: क्या बात है. एक साथी ने लिखा है अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है.
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना, उड़द, जो आपको पसंद है. बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे. बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे. मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी, इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले. 5 फोड़न का तड़का दे. बैगन को भून कर निकाले. अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले. अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले. पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे. थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे. इसमें ग्रेवी नहीं रहती. बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है. पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है. इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती. मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं. तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं. और आप क्या करें?
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत.

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात कही है. उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखे. स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा. और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें.
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है. बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में.
0: हाँ.
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है.
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत. आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार.

सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा पदस्थ रहा उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही जमजा।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए ये कवि बनने का जो सफर होता है आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे वो

0: होता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब,
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
1: जी जी,
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है,
1: जी,
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था,
1: जी,
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान,
1: जी,
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर लाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3 पेज
0: की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर,
0: और हाँ उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया
1: मैं लिख डाला।
0: सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता, तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मेरे पास ऐसे ही दे दी, तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्त लिखित, उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है, और कभी मैं तुम्हारी

0: कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। हाँ। और दो तीन साल चार साल पढ़ो और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सरस्वत जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी कि आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते।
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: 3 लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।

0: शिवा मयंक, केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक।
0: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्में पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी।
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है। उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली। और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी,
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे,
0: हाँ
1: तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है,

0: लिखी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओ, गजब।
0: घर में पैसे चार नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया, और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुकंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी।
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साए में धूप उनकी
1: बड़ी
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा। तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे
0: जी,
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं
0: जी। तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या
1: कहानी है? क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मैं

0: मिला लाते हैं
1: जी।
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं
1: जी।
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे रागों का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा।
0: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई ये। मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है
1: जी, जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है
1: जी, जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
1: जी,
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी,
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला, बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे, तो ये मेरे लिए। और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक
1: मराठी में
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम गाना साया, साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का
1: जी। क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है ये, इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक

की आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता

0: कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
1: जी
0: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
1: क्या बात है, वाह।
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
1: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए, पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मतलब... मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हड़पनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हड़पनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है,
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ।

0: बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
1: जी जी,
0: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
1: जी जी,
0: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
1: बिल्कुल,
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी जी, तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
0: नहीं नहीं,
1: यहाँ सकारात्मक
0: है। हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी,
0: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए
0: लगाने आए हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
1: सृजन करने आए हैं। जी जी,
0: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे
0: पहली बार? देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी,
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा,
1: इलाहाबाद के
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ
1: जी।
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा
1: जी।
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाश है उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी।
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसपे सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहाँ
1: जी।
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप
0: बहुत
1: क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है।

0: भीतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है
1: हाँ।
0: तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है।
1: तो
0: आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
1: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

अभी हम सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत कार्यक्रम जुफाड़ी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आस्था तिवारी। शाम के सुहाने सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के आइए फटाफट जान लेते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है सभ्यताओं के मध्य संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। व्यक्ति विशेष में बात होगी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की। साथ ही आज हम आपके लिए लाए हैं भेंट वार्ता, जिसमें हम सुनवाएंगे आपको CBSE बोर्ड से इंटरमीडिएट में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आनंदिता चतुर्वेदी से दिशा श्रीवास्तव की बातचीत। इसके अलावा आज दिन है बुधवार का और बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट खेल संसार की, और जानेंगे हीट वेव से बेजुबान जानवरों की सुरक्षा के उपाय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। आज की हमारी इस खास चर्चा का विषय है सभ्यताओं के मध्य संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस। क्या आप जानते हैं कि हर साल 10 जून को ही यह खास दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, और इसे मनाने की शुरुआत एक बेहतरीन सोच के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर में सांस्कृतिक तालमेल को बढ़ावा देने के लिए 7 जून 2024 को इस दिवस से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, आज इंटरनेट के दौर ने हमें एक ग्लोबल विलेज तो बना ही दिया है, दूरियां कम हो गई हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारे मन और हमारे विचारों की दूरियां कम हुई? कई बार एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति यही अज्ञानता आज भी दुनिया में टकराव का कारण बनती है। बस इसी दूरी को मिटाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी जड़ों से तो जुड़े रहिए, लेकिन दूसरों के रहन सहन और मान्यताओं को भी खुले दिल से स्वीकार कीजिए। सभ्यताओं के टकराव वाली सोच को पीछे छोड़कर सभ्यताओं के संवाद को अपनाना ही आज के वक्त की सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, यह सिर्फ

एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, यह वैश्विक शांति, विश्व नागरिक और सांस्कृतिक समन्वय जैसे कई रंगों को शामिल करता है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी कि सभ्यताओं के मध्य संवाद स्थापित करना मात्र विदेश नीति का विषय नहीं है, इसकी शुरुआत हमारे अपने घर, अपने मोहल्ले और आस पड़ोस से होती है, क्योंकि जहां संवाद है वहीं सुकून है और वहीं शांति है। इसी विचार के साथ अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जिसे आज हमने आपके लिए लिया है फिल्म जब जब फूल खिले, जिसे सुर से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

दोस्तों, इस गाने के बाद बारी है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट व्यक्ति विशेष की, जिसमें आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की। दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 ईस्वी को हुआ। पिता मुरलीधर और माता मूलमती के आंगन में एक ऐसा बालक जन्मा जिसके भाग्य में भारत माता की बेड़ियों को काटना लिखा था। बेहद साधारण परिवार में पले बढ़े रामप्रसाद बिस्मिल बचपन से ही बहुत कुशाग्र और निडर थे। दोस्तों, अगर हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में रामप्रसाद बिस्मिल के योगदान की बात करें तो उनका विद्रोही सफर बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। जब वे महज 21 साल के थे तब 1918 ईस्वी में उन्होंने गेंदालाल दीक्षित जी के साथ मिलकर मातृ

0: द्विवेदी नाम का एक गुप्त संगठन बनाया। उन्होंने मैनपुरी में भी राष्ट्रीय आंदोलन की अलग जलाई। 1918 में उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश विषय पर पर्चा बांटकर युवाओं में आजादी के लिए अलख जगाई, जिससे ब्रिटिश हुकूमत ने मैनपुरी षड्यंत्र का नाम दिया। इसके बाद मातृवेदी संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1920 के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, जब 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन अचानक से वापस ले लिया, तो रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य युवा क्रांतिकारियों ने इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों से आजादी सिर्फ मिन्नतों से नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देकर ही मिलेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य साथियों के साथ मिलकर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल इस संगठन के मुख्य रणनीतिकार थे। उन्होंने ही इस क्रांतिकारी संगठन का संविधान द येलो पेपर लिखा था। और फिर आया दिन 9 अगस्त 1925 का। जी हाँ, वही ऐतिहासिक दिन जिसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। साथियों, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह ने मिलकर शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही एक डाउन ट्रेन को लूटा, ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जा सके और क्रांतिकारियों के लिए गोला और बम बारूद का बंदोबस्त किया जा सके। यह अंग्रेजी हुकूमत के गुरूर पर सीधा प्रहार था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के नारे को भी लोकप्रिय बनाया। काकोरी ट्रेन एक्शन में आरोपी बनाकर ब्रिटिश सरकार ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई। वहीं सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी की सजा सुनाई गई। महज 30 साल की उम्र में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और इस तरह से वे सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, आज जब हम इस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। बिस्मिल जी का बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम हमारी रगों, हमारे कर्मों और हमारी आपसी एकता में जिंदा रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्यक्ति विशेष। अब आइए सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, जिसमें CBSE से इंटरमीडिएट में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आनंदिता चतुर्वेदी से बातचीत की है दिशा श्रीवास्तव ने।
1: हमारे साथ है आनंदिता चतुर्वेदी, जिन्होंने क्लास 12th में जिले में तीसरी और स्कूल में दूसरी रैंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आनंदिता, आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने अपना ये रिजल्ट देखा?
2: जब मेरा रिजल्ट आया, तब मैं CUET का एग्जाम दे के वापस लौट रही थी। मैं गाड़ी में ही बैठी थी, तो मैंने देखा कि रिजल्ट अपलोड हो गया है। पहले तो मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया। पहले मैंने अपनी दीदी को बोला कि दीदी, एक बार मेरा रिजल्ट देख लो क्या कैसे है। तो फिर उसने मुझे जब मेरी मार्कशीट भेजी और मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरा 98.4% आ रहा था। मुझे तो शुरू में विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा 98.4% आ रहा है। फिर जब एकदम मुझे कंफर्म हो गया, तब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरा इतना परसेंटेज आया है। फिर वो लोग काफी खुश हुए और मैं भी खुशी के मारे मतलब रो दीदी कि ये कैसे हो गया। काफी मतलब विश्वास नहीं हुआ था मुझे।
1: ये आपको कब पता चला कि आप जिला टॉपर हैं थर्ड रैंक से?
2: मैं लखनऊ से जब वापस आई, घर पे आई, फिर मुझे मेरी मैम का मैसेज आया कि तुम्हारी रैंक थर्ड आई है और तुम्हें आज इंटरव्यू देना है, कई लोग तुमसे कुछ पूछने आएंगे, तुम्हें उनको बताना रहेगा तुमने क्या क्या कैसे किया। तब मैं मंदिर में थी, फिर मैं घर आई, मैंने बोला कि मेरी थर्ड रैंक आई है, तो वो और ज्यादा खुशी हो गई कि मतलब एक तो इतने अच्छे मार्क्स और ऊपर से स्कूल में सेकंड और जिले में थर्ड रैंक।
1: और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी, जैसे टीचर्स, माता पिता, किस तरह?
2: मैं सबसे पहले अपने माता पिता मतलब अपने पूरे परिवार को इसका श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि हर समय वो लोग मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि नहीं नहीं अच्छे से करो और

0: जब मैं एकदम तंग आ जाती कि नहीं नहीं पढ़ना मन नहीं कर रहा, तो वो तब भी मुझे मोटिवेट करते थे, कहते थे कि जब मन लग रहा है तभी पढ़ो, बिना मन के पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। और दूसरा मैं अपने टीचर्स को बोलना चाहूंगी, अपने शिक्षकों को, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया मुझे, शुरू से बोलते रहे कि नहीं तुम अच्छा कर लोगी कर लोगी, तो वो काफी बड़ी उस रोल प्ले किया मेरे इस रिजल्ट में।
1: ये काफी अच्छी बात है, माता पिता टीचर्स और पूरे परिवार का साथ आपको मिला। ये बताइए आप आनंदिता कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे?
0: मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की हूँ, मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस और साइकोलॉजी था।
1: जी काफी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो ये बताइए कि जैसे आप की दिनचर्या क्या थी पढ़ाई करते समय, कुछ आप स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो करती थी?
0: हाँ, जैसे मैं सुबह जल्दी उठती थी, मैं रात में जग नहीं पाती थी, तो मैं सुबह उठ जाती थी, लगभग 7 बजे मैं उठ जाती थी ताकि मैं आधे घंटे में अपना जो रोज़मर्रा वाला काम होता है वो करूँ। और फिर मैं लगभग 7:30 बजे बैठ जाती थी और मैं 3-3 घंटे के गैप पे पढ़ती थी ताकि एकदम मुझे मेरे ऊपर प्रेशर ना रहे कि नहीं सब एक ही बार में कम्प्लीट करना है। और मैं अवॉइड करती थी कि मैं रात में ना पढ़ूँ, क्योंकि मुझसे रात में उतना अच्छे से रिटेन नहीं हो पाता था जितना सुबह रिटेन कर लेती थी मैं।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स हमको इजी लगते हैं, कुछ थोड़े टफ लगते हैं, तो आपके लिए ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो इजी और टफ थे?
0: इजी मतलब सारे सब्जेक्ट मॉडरेट थे, पर ऐसे देखे तो इजी लाइब्रेरी साइंस था, जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है, सीबीएसई ने उसे अभी ऐड किया है, तो वो मैं कर ले गई थी अच्छे से। टफ में मुझे हिस्ट्री लगा था, क्योंकि उसकी 3 बुक थी, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो वो थोड़ा रिटेन करने में दिक्कत होती थी, इतनी सारी डेट्स और टाइमलाइन रहता था, पर धीरे धीरे वो भी कर लिया
1: अच्छा,
0: था।
1: तो देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, या फिर जैसे हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, इनको रिवीजन काफी करना पड़ता है, तो आपने कितनी बार रिवाइज किया था?
0: मैं रिवीजन पूरा नहीं करती थी, मैं डेट्स की टाइमलाइन बना लेती थी इम्पोर्टेंट डेट्स की, और मैं नोट्स जैसे लोग बच्चे कॉपी में पूरे भर के बनाते हैं, मैं वैसे नहीं, मैं बस एक पेपर लेती थी और मैं उस चैप्टर की जितनी भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस होती थी कि ऐसा ये वॉर ये तब हुआ, ऐसे मैं सिर्फ हेडलाइन बना लेती थी ताकि एग्जाम के दिन सुबह मैं पूरा ना रिवाइज करूँ, सिर्फ मेन मेन चीज़ें देख सकूँ जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में।
1: जी बिल्कुल, काफी अच्छी चीज आपने कही कि शॉर्ट नोट्स की तरह आपने बना लिया। अच्छा, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी काफी कुछ चीजें लगती हैं टफ लगती हैं कि हम कैसे करें क्या करें, तो उन चीजों को आप टैकल कैसे करती थी?
0: इन चीजों को टैकल करने में जब मुझे कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ लगने लगती थी, एक मेथड होता है जो कि मैंने क्लास 10th में सीखा था अपने टीचर से, कि जो चीज़ एकदम समझ नहीं आ रही है उसको तुम पढ़ते पढ़ते बगल में स्क्रिबल, मतलब पेन से एक तरफ ऐसे से मतलब स्क्रिबल करते रहो, कुछ लिखो मत, वो जो चीज़ तुम्हें अपने आप याद होती जाती है। तो चीज़ मैंने कई बार की और मुझे वो चीज़ याद होती गई, और तेज़ बोल के पढ़ने से जो चीज़ टफ लगती है तेज़ बोलो तो चीज़ समझ में आती है, या अपने छोटे भाई बहन को बस तुम बैठ के बोलो कि तुम ये सुन लो मेरी बात, वो चीज़ याद हो जाती है।
1: जी ये काफ़ी अच्छी आपने ट्रिक बता दिया, जो लोग सुन रहे होंगे उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, खूब देर तक पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से बोरिंग फील होने लगता है, तो उस टाइम आप क्या करती थी?
0: जब मुझे बोरिंग फील होता था तो मैं यूजुअली साइकिलिंग करने का मुझे बहुत मतलब मन करता है, तो मैं बाहर जाके साइकिलिंग करती थी, और या तो अपने मनपसंद गाने सुन लेती थी, या तो मम्मी के पास चली जाती कि मम्मी ऐसा ऐसा है, तो मम्मी मुझे कहती थी कोई बात नहीं आराम से कर लेना, कल कर लेना, ऐसी कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। तो वो टाइम पीरियड मैं अपना बाहर ही व्यतीत करती थी, कि पढ़ाई से दूर रहती थी, बाहर रहती थी, उसमें मन नहीं लगाती थी कि हाँ अभी ये बच्चा है, कोई किसी और चीज में मैं ध्यान लगा लेती थी अपना।
1: मतलब आप क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई हो गई अब चलो थोड़ी देर फोन चला लें, ये काम आपने नहीं किया?
0: नहीं नहीं, फोन वाला काम मैंने नहीं किया, मतलब फोन मैं यूज करी हूँ, पर मैं यूट्यूब से जैसे चीजें पढ़ने के लिए जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, पर ये नहीं कि मैं मुझे बोरियत होने लगी तो मैं कुछ रील्स चलाने लगू, मैं बाहर चली जाती थी, कि उस समय तो मौसम बोर्ड्स के समय मौसम भी वैसा कुछ गर्मी तो रहती नहीं है, तो अच्छा लगता था।
1: जैसे एग्जाम टाइम के प्रेशर को आप कैसे, जैसे अब आपका पेपर आज कम्प्लीट हो गया, अब नेक्स्ट पेपर के लिए किस तरह से प्रेशर को मेंटेन किया आप?
0: जब नेक्स्ट पेपर आना रहता था तो मैं उसी शाम जिस दिन मैं पेपर देके आई रहती थी, मैं उस शाम एकदम नहीं पढ़ती थी, मैं अगले दिन ही से पढ़ना शुरू करती थी। और जैसे अगर मेरा दूसरा पेपर 4 दिन के गैप पे है तो मैं 2 दिन पढ़ती थी, 1 दिन रिविजन करती थी, सारे दिन पढ़ाई नहीं करती थी कि नहीं एक एक एक चीज रटते जाओ, वैसे वाला नहीं था, जितना हो पा रहा है उतना ही करती थी।
1: तो ये काफी अच्छी बात है कि आप बहुत ही एक तरह से कहेंगे मेंटेन करके आपने चीजों को चला, ये अच्छी बात है। तो आप लोगों को ऐसी कौन सी 3 सलाह देना चाहेंगी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कि जो आपको लगता है ये चीज तो बेस्ट है फॉलो?

0: करना चाहिए?
1: सबसे पहली चीज मैं सलाह देना चाहूंगी वो है कंसिस्टेंसी की। भले ही आपका मन नहीं कर रहा है अभी पढ़ने का, इसका मतलब ये नहीं कि चलिए आप पूरे दिन ना पढ़िए, पर आप कंसिस्टेंट रहिए। आपने जो गोल बनाया है वो आप उसी दिन कंप्लीट कर लिया, आपको खुद ही में खुशी महसूस होगी कि मैंने ये चीज कंप्लीट कर ली है। दूसरी चीज मैं बोलूंगी पेशेंस और कामनेस, कि अपने आप में आप एकदम वो रहिए कि नहीं, खुद में सेल्फ बिलीव कि हो जाएगा हो जाएगा। ये नहीं कि अरे मेरे दोस्त ने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया है। आप खुद पे विश्वास रखिए, आप जब तक खुद पे विश्वास रखेंगे तब तक सारी चीजें अच्छे से होंगी। तीसरी चीज है रिविजन। रिविजन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग आखिरी समय तक सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि रिविजन और PYQs लगाने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि आधा पेपर उसी से रिलेटेड आता है। तो एक और 2 दिन आप अपना पूरा रिवाइज और PYQ के लिए रखिए
0: बिल्कुल,
1: रखिए
0: यानी
1: हैं।
0: तीन चीज है आपकी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस
1: पेशेंस,
0: और तीसरा
1: रिविजन।
0: रिविजन। तो ये अच्छी सलाह दी, आप भी फॉलो कर सकते हैं जो हमें सुन रहे हैं। और अच्छा आनंदिता, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, और उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है?
1: मुझे प्रेरणा अपने बाबा से
0: जी
1: मिलती थी, नारायण दत्त चौबे जी से। जब भी हम कोई मतलब जब भी हमारे घर में कोई क्लास पास करता था तो हमें उस हिसाब से वो एकदम बोलते थे कि नहीं आज तुम्हें ये मिलेगा, आज तुम्हें ये मिलेगा। तो काफी अच्छा लगता था कि जब भी कुछ अच्छा करो तो बाबा रहेंगे, कुछ ना कुछ देने के लिए रहेंगे। तो वो
0: जी
1: एज अ मोटिवेशन काम करता
0: जी
1: था, भले वो आए हम लोग को शाबाशी दें, वो
0: बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छा लगता था।
0: जी, ये चीज काफी अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं। और अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं आपकी?
1: मेरी पढ़ाई के अलावा, एक तो मैंने बताया मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, दूसरी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है।
0: जी
1: मतलब बेसिकली थ्रिलर बुक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ाई के अलावा जैसे लोग बेसिकली हिस्ट्री और वो सब पढ़ते हैं, पर मुझे थ्रिलर बुक्स काफ़ी इंगेजिंग लगती है। आपका माइंड हमेशा वर्क पे रहता है कि क्या
0: हाँ
1: कैसे होगा। साइकिलिंग बुक्स और गार्डनिंग करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये फूल निकला है, ये फूल निकला है, तो इनके बारे में देखना देखना कि कैसे और नए नए
0: जी
1: पौधे आप लगा सकते
0: काफी अच्छे
1: हैं।
0: इंटरेस्ट भी हैं आपके, मतलब पढ़ाई के अलावा भी आप बहुत ही अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हैं। और आगे चलकर आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं?
1: मैंने अभी तक तो सोचा है कि पहले मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहूँगी और फिर उसके बाद मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। मुझे हमेशा
0: जी
1: से, जब मैं क्लास 10th में थी तो मेरी हिस्ट्री की टीचर ने मुझे बताया था कि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो
0: हाँ,
1: डिसाइफर
0: डिसाइफर
1: नहीं
0: नहीं
1: हुई
0: हुई।
1: है। तो मेरा हमेशा से था कि नहीं, मुझे ये डिसाइफर करना है, ये डिसाइफर करना है, तभी से मेरे अंदर आर्कियोलॉजिस्ट वाला वो है कि नहीं मैं यही बनूंगी।
0: काफी अच्छी बात है कि आपका सब्जेक्ट जो है उसमें इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इंटरेस्ट की चीजों में आगे बढ़ें। और इस समय कई युवा छात्र हमें सुन रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, और उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम चीजें कर सकते हैं, या उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: भरोसा नहीं होता, यही सबसे बड़ी कमी है।
0: जी
1: भरोसा खुद पे सबसे ज्यादा करना
0: जी
1: चाहिए, मतलब एग्जाम के समय तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आप किसी और को तो सुन नहीं सकते हैं कि ये इसका आंसर ये होगा,
0: जी
1: इसका आंसर ये होगा। जो आपने पढ़ा है वही सबसे बड़ी आपकी वो है कि नहीं आपने ये पढ़ा था, आप उसको एग्जाम में अगर ना आए आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, चलिए
0: जी
1: ठीक है टाइम जा रहा है, पर गलत लिखने से अच्छा है कि आप कुछ ना लिखें पर सही लिखें।
0: बिल्कुल
1: तो आंख बंद करके जब आप सोचेंगे आपको खुद ही में वो आंसर बार बार आएगा कि हाँ नहीं ये है ये है ये है, तो आप उसको लिख लेंगे खुद में। मतलब सेल्फ मोटिवेशन भी
0: जी
1: बहुत जरूरी है एग्जाम के समय।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आनंदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
1: धन्यवाद
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता आनंदिता चतुर्वेदी और दिशा श्रीवास्तव के बीच। अब बारी है चाय की चुस्कियों वाले एक छोटे से ब्रेक की।
3: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर।

0: हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी में। जैसा कि आज दिन है बुधवार का और बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट खेल संसार की, जिसमें आज हम लाए हैं खबरें टेनिस से लेकर क्रिकेट जगत की। तो आइए जानते हैं किसने मारे चौके छक्के, कौन किसने दागे गोल, कहां उड़ी गिल्लियां और कौन हुआ क्लीन बोल्ड। दोस्तों, इस हफ्ते की पहली खबर है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा से जुड़ी, जिन्होंने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। 5 जून 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह उपलब्धि हासिल करने वाले प्रज्ञानंदा पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, 12 जून 2026 से ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज होगा, जिसके लिए ICC ने कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है। इस बार कमेंट्री टीम में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, वेदा कृष्ण मूर्ति जैसी दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ ही दिनेश कार्तिक व जतिन सप्रू को भी कमेंट्री टीम का हिस्सा बनाया गया है। गौरतलब है कि पहला मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के मध्य बर्मिंघम में खेला जाएगा। दोस्तों, अगली खबर है बॉक्सिंग के रिम से। भारत की जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही IPL की समाप्ति के बाद BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखलाओं के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा टीम के उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है, जिससे वैभव 15 साल और 71 दिन की उम्र में T20 स्क्वाड में चुने जाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। साथियों, 6 जून 2026 को जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने जापान को फाइनल में 4-1 से पराजित कर टूर्नामेंट अपने नाम किया। इसके अलावा 6 जून 2026 को गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। साथियों, अब खबर फ्रेंच ओपन से। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने फ्रांस के रोलैंड गैरोस में 7 जून 2026 को खेले गए मेन सिंगल के फाइनल मैच में इटली के क्लेवियो कोबोली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। दोस्तों, खेल संसार में जीत की खबरें सुनकर मन में एक अलग ही जोश भर गया होगा ना, लेकिन बाहर निकलते ही यह जोश पसीने में बदल जाता है। उफ, आसमान से जैसे आग बरस रही हो। तो दोस्तों, आज हमारा ये बेहद खास सेगमेंट, जिसका विषय है हीट वेव, बढ़ता तापमान और जीवों की सुरक्षा। आज जिस तरह से पारा रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों और पक्षियों का भी हाल बेहाल है। कंक्रीट के इस जंगल में उनके लिए ना तो पानी बचा है और

0: ना ही छांव। इसलिए दोस्तों, इस भयंकर हीट वेव में हमारी थोड़ी सी संवेदनशीलता किसी बेजुबान की जान बचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम पक्षियों और पशुओं के लिए अपने घर के बाहर, अपनी छत, बालकनी और खिड़की के पास मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी और दाना जरूर रखें। यही नहीं, अगर आपके घरों के बाहर थोड़ी छाया में कोई पशु खड़ा हो तो उसे भगाएं नहीं। याद रखिए, गर्मी का सितम हम तभी झेल पाएंगे जब हम अपना और अपने आसपास के हर जीव का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, इसी नेक विचार के साथ आज का हमारा ये शानदार सफर यहीं समाप्त होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा कल हम आपके लिए लेकर आएंगे युवा संवाद सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय होगा खेल हमारे लिए कितने जरूरी हैं। आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं 7376804090 पर। तब तक के लिए अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत और इस चिलचिलाती गर्मी में रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। नमस्कार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

रेखा गौड़ और सखियों की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये देवी गीत। और अब लीजिए सुनिए नकटा, सुषमा गुप्ता और सखियों की आवाज।

0: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: और भाई साहब क्या हाल है
2: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
1: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
2: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

हैदर अली जुगनू और साथियों की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये पारंपरिक लोकगीत। और अब लीजिए सुनिए शशिकांत मिश्रा और साथियों की आवाज में ये विकास गीत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं, इन दिनों धूप बहुत तेज है, ऐसे में अपनी सुरक्षा करें। जब भी घर से बाहर निकलें और खासकर जब खुले में काम करते हैं तो सिर पर यानी चेहरे पर सब जगह कपड़े जरूर हों, इस बात का ध्यान रखें। छाते का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोछें और चिकित्सक से परामर्श करें। यात्रा करने के पूर्व शुद्ध साफ शीतल जल पिए, अपने साथ पानी लेकर भी चलें। श्रम साध्य कार्यों को ठंडे समय में करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि दोपहर में घर से ना निकलें। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: साथ मुझे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने

0: पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides

कमल बारोट और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का ये गीत। गीत था फारूक का और संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल का।

फर्ज फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को। इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम शाम सुहानी। दीजिए विवेकानंद को इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी अध्याय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 6:20 होने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पाञ्च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,200,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य सीएनजी इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च एलपीजी संपर्कान् पीएनजी संपर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिकाप्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायां ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 6:30 और 8 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय।

0: मंत्रालय के विस्तार तक होती है मन की बात। प्रधानमंत्री के साथ मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।

अनीता श्रीवास्तव और

बड़े हैं दुलरुआ ये दशरथ के ललुआ, बाल घुंघराले चमक रहे गलुआ, वठवा गुलाल चुए कभी नहीं धोने।

खेल रहे महलन मा खेलावे सब रनिया, लालन खेले बजाय पैजनिया, मोतियन के लर टूटे जब शुरू करे रोना, नहीं लग जाई है।

0: लालन खेले बजे पैजनिया मोतियन के लर टूटे जब सुर करे रोना नहीं लग गई है कंवर।
1: कालीचरण मिश्रा और साथियों के गाय सी लोकगीत के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240044 और 7800037222।
3: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: प्रदूषण के कारण अगर देखा जाए तो अपने पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़त है। अब भाई जब विपरीत प्रभाव पड़त है तो वह का भी अपने सबका ध्यान दे के जरूरत है, साथ ही साथ ओके कैसे निदान होए ये पर विचार करे के जरूरत है। पर्यावरण बचावे के लिए हरियाली बढ़ावे के बहुत से उपाय अपने सब कीन जा सकत है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के जरूरत है। यमन अगर देखा जाए तो पहला उपाय तो यही है कि अपने समय अपने जन्मदिन पर, त्योहार पर या कोनो भी खास अवसर जब भी आप सब समझो एक पौधा लगाए के वह के उचित देखभाल करके अपने यह फर्ज का पूरा कीन जा सकत है ना। साथ ही पानी के बचाव के लिए ब्रश करत समय या गाड़ी का धोवत समय नल का खुला ना छोड़ें भाई। बारिश के पानी माने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जौन बात की जात है ओका बचावे के आपन पुरजोर कोशिश भी अपने सबकी जिम्मेवारी है। प्लास्टिक के बहिष्कार आज के समय में बहुत जरूरी है। बाजार में खरीदारी करे के लिए जब भी निकलो भैया कपड़े के थैला के इस्तेमाल करो, प्लास्टिक के थैली से बचे के जरूरत है। हरियाली बढ़ावे के बदे एक संकल्प से जुड़कर अपने खेत, घर और सार्वजनिक स्थान पर पौधा लगावे के काम भी अपने समय कीन जा सकत है। पौधा के देखभाल के बदे अपने सबके जिम्मेवारी है कि पहले से मौजूद जौन पुरान पेड़ है उनके कटान का भी रोकब जरूरी है और उनके अधिक सुरक्षा एवं हरियाली का बनाए रखे में आपन जौन भी सहयोग है ओका देवे के जरूरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से अपने सबका बचे के जरूरत है। वह के जगह पर कपड़े और जूट के बैग के इस्तेमाल हमेशा कीन जाए और जब भी बाजार जाओ कोनो जगह जाओ तो एक भाई अपन झोला जरूर लेके जाओ। तो यही लिए भैया आओ संकल्प लीन जाए। बारिश के महीना भी आएगा है, लगभग मानसून आज से 10-15 दिन में आए जाए की उम्मीद रात है 20-25 जून तक। पर्यावरण का बचावे मा और अपने धरती के तापमान का कम करे के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे और हरियाली का बढ़ावे में अपन योगदान देवे में सबसे ज्यादा अपने सबका खुशहाली मिले। साथ ही प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण भी होए, वृक्षारोपण, प्लास्टिक के उपयोग का रोके और पानी बचावे मा अपने सबका जौन भी अपन योगदान दिन जा सकत है ओका सुनिश्चित कराया जाए ताकि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कीन जा सके। तो ये तो बात भई भई कि हरियाली का कैसे बढ़ाए के पर्यावरण का बचावा जा सकत है, लेकिन अपने जौन प्रकृति है यहूँ से अपने सबका थोड़ा सा एक संवाद करे की जरूरत है, कुछ ओका समझे की जरूरत है ना। तो ये तो बात भाई हम समझते हैं, अगर चंद्रमौली सहाय और साथी भैया तैयार है उनके साथ कुछ अगर समझा जाए सुना जाए तो ज्यादा ठीक रहे ना।
1: छठ

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: पंचों जय हिंद। भैया देखो, सबसे पहले तो आज के कृषि जगत कार्यक्रम में आप सब पंचन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ साथ हम एक चीज का बतावा चाहिए कि अपने समय अगर यह बात का बहुत पुराने समय से जाना जाता है, सुना जाता है कि पेड़ पौधे अपने जीवन के मुख्य आधार हैं और यही पेड़ पौधे अपने सबका स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन भी देते हैं, बारिश के वाहक होते हैं और तापमान का नियंत्रण रखे में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभावत है। मुला तेजी से होत कटान और प्रदूषण

भाई देखो, इतनी बात तो हम समझे थे कि आपो सब समझाओ वो, कि अपने सबका अपने भाई प्रकृति से हमेशा एक आपसी सामंजस्य बनावे की जरूरत है। बहुत कुछ अपने सबका निःशुल्क दिए है अपन प्रकृति, ओके सबके सम्मान करब जरूरी है। अब जैसे देखो, आज जौन अपने सबका चाहे फल है, सब्जी है, खाद्यान्न है, ये सब अपने प्रकृति के माध्यम से मिलत है, तो वह का अपने सबका कोशिश करे के ओके सम्मान करे के, अन्न के एक एक दाना के सम्मान करे के, जितना अपने सबका लेख है उतना खाए लेख है, कहा भी गवा है ना कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, तो वह चीज का अनुसरण करब जरूरी है। एक बहुत पुरानी कहावत हम समझत है अपने सभे सुना गवा हुए कि बहुत बड़ी बड़ी बात करे से मनई बड़ा नहीं बनत है, बल्कि बहुत छोटी छोटी जौन बात है ओके अनुसरण अगर कीन जाए तो वह से मनई बड़ा बन सकत है। तो बड़ा बने के लिए अपने सोच का, अपने विचार का, अपने कार्य का और अपने व्यवहार का बड़ा करब सबसे पहले जरूरी है, ओके बाद बाकी चीज आवत है। परिवार है तो परिवार में एक बात का जान के चलो भैया, बड़े हो तो ईमान के चलो अपन बड़प्पन रखो, छोट हो तो थोड़ा सा यह बात के ध्यान रखो कि किहू के मान सम्मान में कोनो मेर की कमी ना हो पावे, है ना। सबका ले के चलब बहुत जरूरी है। परिवार में सामंजस्य बनाए के लिए भाई बिटिया है, बिटवा है, पत्नी है, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, सबके एक प्यार मोहब्बत और सामंजस्य अगर रखा जाए तब परिवार चल सकत है। और यह बात का हम समझे थे कि आप सब समझ भी रहा हो वो, कि आज अगर परिवार के धुरी देखो बिगड़त है, संयुक्त परिवार के परंपरा रही धीरे धीरे करके एकल परिवार के परंपरा आज बढ़त बाटे, ओके बहुत बड़ी वजह है आपसी सामंजस्य में कमी हो, है ना। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना अब वह मेर के ना ही रह गई है जो

0: पुरान समय में रही, तो वह चीज के अपने सबका अब सोचे की जरूरत है कि यहमन अपने सबे कौन मेर के व्यवस्था में अपने सहयोग दिन जा सकत है ना। मान लिया परिवार में कहूं कोनो दिक्कत आवत बाटे तो आप कौन मेर से सहयोग दे सकत हो। मान लो आर्थिक सहयोग नहीं दे सकत हो, पैसा कौड़ी नहीं ना वह मेर के, तो कम से कम मानसिक सहयोग दे सकत हो, है कि नहीं। आप अपने नैतिक जौन कर्तव्य है ओके पालन करके सहयोग दे सकत हो। तमाम मेर के सहयोग उमन शामिल रहते है, बस एक चीज है करे के प्रवृत्ति होए की चाहिए और दूसरे के सहे के क्षमता होए के चाहिए। अगर अपने सभे केहू के प्रति कोनो कार्य का कीन जात है और दुई बात सह लीन जात है तो ओका मान के चलो कि कहूं ना कहूं ओके सकारात्मक परिणाम भी भैया आवत है और वह परिणाम से अपने सबके का होत है कि अपने सबके खुशहाली रहते, समृद्धि रहते, एक दूसरे में भाईचारा रहते, साथ ही साथ बहुत सारी बात रहते। और यह दुनिया में कोनो भैया यह तरह के कार्य नहीं ना जौन अपने सब अकेले कीन जा सके। परिवार में देखो अगर अपने सब बाहर निकले थे, पैसा कमाई थे, अपन कार्य करी थे, तो घर में भी जौन घरेतीन लोग होते हैं उनके भी अपन एक जिम्मेवारी रहा था घर के प्रति। भाई घर में खाना है, पीना है, तमाम तरह के और घर के पारिवारिक जौन कार्य है ओका वह सब पूरा करते हैं। तो कोनो मैं के प्रवृत्ति ना पालो, मैं से हम के तरफ बढ़ो कि हम सब है ना, मैं नहीं तो हम सब जब रहबे तो ई जौन पूरी परिवार है, पूरा धरा है, वो लागे कि एक परिवार है अपन। तो भैया यह सब बात के आप सब अनुसरण करबे करत हो, हम तो बात बात कही के माध्यम से आप सबके बीच में कुछ अपन बात रखे ने, लेकिन आप सब सज्ञान हो, आप सब बुद्धिमान हो, हमेशा वह तरह के कार्य व्यवहार करो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गाँव में और खासकर अपने देश में कि कोनो मेर की उंगली कोनो मनई ना उठाए पावे। तो भैया ये चीज का ध्यान रखियो और एक बात का ध्यान रखियो के और अपने सबका कि कुछ यह तरह की जानकारी अपने सबके लगा हुए के चाहिए जिससे अपने सब है कुछ अतिरिक्त लाभ कमाए सकी। अब जैसे देखो धान के बुआई में DSR के जोन बुआई होते सीधी उसे और ड्रैगन फ्रूट से कैसे अपने सब मुनाफा कमावा जा सकते है, कोने तरीके से कीन जा सकते है, एक विषय में अपन जोन भैया हैं श्री राकेश कुमार वर्मा भैया इनसे राम प्रकाश पांडे भैया के बतकही भई है तो यह का आज हम पंचायती में लायन है। एक चलो सुना जाए भैया कि का कुछ हेमन अपने सबके लिए अमल करे योग्य है।
1: एक अपने सब खेती बाड़ी तो करबे करी थी ना, लेकिन एक चीज है खेती बाड़ी में कुछ ऐसा तरीका है जेका अगर अपनाई खास करके कुछ वैज्ञानिक भैया की पद्धति है उनके बात मानी, कुछ अनुभवी किसान है उनके पास अनुभव है, काहे से वे भ्रमण कहके देखा थे कहा ना देखी दाखा पुण्य देखी दाखा पाप। तो ऐसे आज अपने बीच में प्रगतिशील किसान है, आप इनसे परिचित हैं, पहले सुन चुका है, अब आपका पता है कि मुख्यमंत्री जी से 1,00,000 रुपये पुरस्कार जीते रहे। अब आप सोचे तो ऐसा किसान क्या है कि नहीं, तो ऐसा किसान अपने बीच में आज मौजूद हैं जो न है राकेश कुमार वर्मा भैया। तो सबसे पहले तो राकेश वर्मा भैया आपके हमारी पंचायती में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और आपसे यह जानना चाहिए थी ना कि यह साइड खेती में काव करता है।
2: यह साइड खेती में कुछ सब्जी फसल बा जैसे लौकी, नेनुआ, यह सब फसल बा, बाकी ड्रैगन फ्रूट आप सब कई बार किस गाँव में गोष्ठी के माध्यम से आप सब हमारे यहाँ गए।
1: बिल्कुल।
2: ड्रैगन फ्रूट में अब हमारे फल आवे शुरू होगी बा, और अब धान जोन बाटे बोए की तैयारी,
1: अच्छा
2: ना कि रोपाई करे का, बोए की तैयारी ताई गर्मी के गहरी जुताई खेत के कई के खेत छोड़ दिन गा बा। हमारे यहाँ 9 तारीख से DSR मशीन जोन की धान बोए के स्पेशलिस्ट मशीन बा वो हमारे गाँव में 9 तारीख से लगातार चले जोन की कई हेक्टेयर में धान को बुआई हुई।
1: ई कहाँ से है मशीन, क्यों खरीदे है पंच भैया?
2: ये मशीन एक दिन पंच भैया ही मया बाजार में कनकपुर एक गांव बा वहीं के एक दिन भैया हमारे खरीदे है। तो पिछले साल से हमारे सब धान के सीधी बुआई कह रहे हैं तो वैसे जोन बाटे काफी लाभ बा।
1: अच्छा।
2: जिससे लाभ ही बा कि किसान भाई नर्सरी डाली, नर्सरी 20-21 दिन नर्सरी बचाई है, ओके दवा डाली है, वहां सिंचाई पताई खाद दवा जौन कुछ पड़े वकरी बाद वका फिर खेते में रोपाई करी है। लेबर के प्रॉब्लम जोन बाटे दिन प्रतिदिन बढ़त जात बा, वो चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो सब करते हैं।
1: यानी लेबर के समस्या न हो इसलिए मशीन को उपयोग
2: ये नाते मशीन को उपयोग करे ताई
1: ओके नाम है
2: DSR मशीन।
1: अच्छा।
2: तो यानी सीधे

0: खेत में धान के बुआई, धान की सीधी बुआई का नाम है DSR।
1: बिल्कुल, एक बात आपसे जानना चाहिए थी, बात तो बेकरबे करब, खास करके किसानी के, जैसे आपका मुख्यमंत्री द्वारा 1,00,000 रुपए मिली रही
0: जी,
1: कैसे मिली रही, का की रही?
0: वो हम ड्रैगन फ्रूट की खेती पे हमें अपने ही कुमारगंज यूनिवर्सिटी में मेला लाग रहा और हमारा स्टॉल लाग रहा
1: जी,
0: तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो उन्होंने हमारे फल को देखा, उससे प्रभावित हुए, फिर हमें यूनिवर्सिटी के द्वारा और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमें जो है लखनऊ भेजा गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 1,00,000 रुपए का नगद चेक और ऑल यूपी का अवार्ड भी दिया गया केवल ड्रैगन फ्रूट पर।
1: बिल्कुल, तो ड्रैगन फ्रूट के खेती करता है
0: जी,
1: कैसे करता है, कैसे मन में आवा और इतनी आमदनी कहाँ से कमाई लीन, पंच का बता में।
0: देखें, ड्रैगन फ्रूट के खेती जैसे मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज बा,
1: बिल्कुल,
0: और मोबाइल बहुत बुरी चीज बा,
1: उपयोग के ऊपर है,
0: अपने अपने विचार के ऊपर, अपने अपने उपयोग के। तो हम एक दिन इसे लेटर रहे यूट्यूब पर देखते रहे शाम के, तो हम एक कलकत्ता के नर्सरी वाला नंबर आए ड्रैगन फ्रूट के
1: जी,
0: तो हम उसे जो उनमें बात की हैं, तो देखे नहीं ड्रैगन फ्रूट खेती करते बा और नर्सरी देते बा, तो हम उसे जब बात की हैं कि भैया हमें पौधा चाहिए कैसे मिल जाए, तो हमें कहीं 120 रुपया पौधा हम फैयाबाद पहुंचा दिए।
1: अच्छा,
0: तो तब यह ड्रैगन फ्रूट खेती क्यों जल्दी नाव ना लेते रहा, क्यों नावे ना जान रहा
1: ये राकेश भैया कहीं पहुंचा दिए, तो तू कहो क्या पैसा दे दिया कि पहले दे ना
0: नहीं हाँ। हम पैसा कहीं जैसे कुछ पैसा डाल दिया बुकिंग टाइप में, जैसे अगले आदमी का कुछ विश्वास हो चाहिए,
1: बिल्कुल, कि काम
0: तो हम संतोष करके 500 रुपया उनके अकाउंट में डाल दिए।
1: ये जानत ना रहे ना पहचानत रहे
0: नहीं
1: हाँ।
0: देखें दुनिया में सब आदमी एक मेर नहीं ना, बहुत ईमानदारो है, बहुत कुछ ऐसा है जो उन पैसा कौड़ी मार सकते,
1: बस जैसे नहीं तो ऐसे
0: बरकत। तो हम उन्हें 500 रुपया डालन, लेकिन वही जोन बाटे हमें तीसरे दिन देहरा पे ही लाज के पौधा हमार 300 पौधा
1: ट्रेन पे
0: हाँ। और हमें फोन किए कि भैया आपको पौधा जात बा, यह टाइम पे पहुंचे आप जाए पौधा
1: ले लिया। कई के बात हुई, कई साल पहले के,
0: ये लगभग 19 के बात।
1: अच्छा, 2019 के लॉकडाउन लाग रहा तब, क्यों है लागे वाला
0: नहीं लागे वाला रहा।
1: अच्छा, लाग नहीं रहा
0: नहीं। तो और कहीं जे तुका पौधा दे जाके वो कहे हमें नंबर दे, कहीं जे तू का पौधा दे वही बाकी पेमेंट तू दे दिया, हमारे लगे पैसा पहुंच जाए, हम जो उनका पौधा तुहार पहुंचा देते। तो यह मेरा हमारा पौधा है।
1: शुरुआत कैसे की?
0: तो एक शुरुआत दौर में हम फिर लगावे शुरू किए हैं, तो एक दांत एक हम लगाए खेत में, तो हमारे हर गांव में कुछ आदमी बेकार होते, जिद्दी आदमी होते, तो हमारा पौधा नुकसान कर दी।
1: अच्छा,
0: नुकसान ये कहीं कि पौधा आधे आधे पर से सब टूट गए।
1: अच्छा,
0: लेकिन जोन बचा रहा जड़ इनायक को खत्म भरी रही, तो वो का फिर हम वहीं से उखाड़ के जहाँ जाने कि हमारे साथी सेफ रहे वह जगह लगाएं, तो 300 पौधा में हमारे 160 पौधा खाली बचा।
1: अच्छा,
0: और वह 160 पौधा से हम बहुत अच्छी आमदनी, 160 पौधा से आप ही मान लिया कि अब हमारा ड्रैगन फ्रूट जून चलतवा, जुलाई फर्स्ट वीक से निकले शुरू हो जाए।
1: अच्छा,
0: और दिसंबर तक लगातार फल आवा करे, फूल आवा करे, पका करे, दिसंबर तक लगातार 10 किलो 20 किलो फल हमारे डेली निकला करे।
1: अच्छा,
0: तो हमारे 300 रुपये किलो बिक जाता है, ये मान लिया आपके 70 से 80 हजार रुपया हमारे 160 पौधा से बड़े आराम से साल में बच जाते हैं।
1: बहुत सही बात कह दी, एक ही तो है कि ड्रैगन फ्रूट के बाद, लेकिन आपके DSR पद्धति से आपके यहाँ धान की बुआई अब की बार हुई।
0: हाँ,
1: पंच भैया मन बनाए हैं, तो अब के बेर न डालिए के मतलब
0: नहीं
1: बेर हाँ।
0: जैसे हाँ, कुछ किसान बेरन डालत है
1: हाँ।
0: हम तो बिल्कुल ना डालत है, हमारे यहाँ कम से कम 40 से 50 किसान ऐसे है जो नर्सरी डेवलपमेंट नहीं करी है।
1: अच्छा,
0: वो सीधी बुआई कर दी है और ये बुआई 9 तारीख से हमारे गांव सभा में शुरू हुए। जय किसान भाई का देखे हुए वो आए कि हमारे सबका प्लाट देख सकते,
1: बिल्कुल
0: आए के कैसे कौन चीज वो का भय बा वो का देख सकते, और एमा हुए कुछ ना ना, जैसे बीज भी लागत कम, बीज भी कम लगता है, खाद भी कम लगती है, जोताई जोन बा जिसे गर्मी की जोताई करते है एकदम तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: DSR धान करता है मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिसे गर्मी की जोताई किए होगा तो खेत में ढेला होंगे
1: हाँ।
0: वन है रोटावेटर एकदम चलवाई के और DSR मशीन से धान की बुआई।

0: कराए जा, धान बुआई कराए के 24 घंटा के अंदर खेत में पर्याप्त नमी बनाई दिए परे,
1: अच्छा,
0: जौने से कि धान अंकुरित होई के जम जाए। हाँ, थोड़ी की हमारी दिक्कत ही आवत है खरपतवार के।
1: अच्छा,
0: तो जिसे पहले बाबा दादा सब करत रहे बुआरी धान, हम बचपन में देखे है कि वो का तब बिदा ही जात रहा बैला से, दो दो फुट पे तीन तीन फुट पे जोत ही जात रहा, जोते के बाद हंगाई जात रहा खरपतवार ताई, तब खरपतवार दवाई का साधन ना है रहा,
1: बिल्कुल
0: नासी कहे यानी दवा कहे नियंत्रण ना रहा है के, तो किसान निरावत निरावत परेशान हो जात रहा
1: जी,
0: मैनुअली करे में सबका परेशानी रही। तो अब कौन दिक्कत बा, अब तो सारे खरपतवार के दवाई आई गई, तो हम का करे 1500 रुपया बीघा बैठवारी खर्च करी,
1: बिल्कुल
0: मजदूरी हम का करे 1500 रुपया बीघा दी। अब एक देख लें यमा लागत कैसे कम है, एक माह कल्टीवेटर खेत, एक माह रोटावेटर 700 रुपया, वो करीब 2 किलो बीज, 10 किलो खाद, यही इतने माह हमार धान बुए उठा।
1: अच्छा,
0: यानी ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया की लागत में हमार 1 बीघा धान बुए उठा, ना ही तो 1000 रुपया से ज्यादा हम जोताई दी थे, वो करीब 1400 से 1500 रुपया प्रति बीघा लगवाई दी थे, वो करे बादो हमें वहां खाद दवाई जितना कुछ बार सिस्टम सब तो हम करे परे।
1: और एक चीज और पहले देखा धनवा जोन रहत रहा मन ही धरे रहत रहा, हर एक साल में बनावे फिर का ही बी एकटा धरे ही भैया, अब वो सब काम खत्म हो गया है ना।
0: ना काम खत्म हो गया, जैसे हम पिछले साल मालवीय सुगंधा एक धान अपने कृषि विज्ञान केंद्र से लेके रहे हैं।
1: अच्छा,
0: वो कई बिया हम खुद रखे है, किसान अगर जैसे अच्छी वैरायटी कोनो पाई गए तो वो कई बीज अपने घरे रख सकते है, इसमें कोनो दिक्कत ना है
1: जी।
0: तो मालवीय सुगंधा 156 के बीज हम अपने घर के लगावत है, तो ऐसा कोनो समस्या ना है ना, किसान अपने घरे बीज ना रख सकत, अगर सुरक्षित रख सकत बा कि वहां सीलन ना लागे जामिनेशन अच्छा हुए तो सुरक्षित रख के अपन अपने बीज का उपयोग कर सकत है।
1: बिल्कुल, एक चीज पंच भैया के लागत कम लागे, वो ड्रैगन फ्रूटो खेती के लिए DSR विधि से धान के सीधी बुआई के लिए उनका का ध्यान रखे पड़े।
0: देखे ध्यान हमारा खाली खर पतवार से, हमारा सीधा सीधी धान के बुआई में केवल खर पतवार के ध्यान हमें रखे बा, खर पतवार अगर नियंत्रण कर ले गया तो ये मान लिया किसान भैया कि उसे अच्छा धान तो हार बैठाए पे न हुए।
1: बिल्कुल, एक बात और राकेश भैया, ये पता ना कैसे खर पतवार हुआ ना, बहुत तेज भागत, बहुत तेज।
0: हाँ, ये जो बा हमारे फसल से ज्यादा तेज भागत है, तो यकाताई जिसे जे DSR करत बा वो का 14 से 14 दिन में एक बार हल्की दवा और 28 दिन पे फिर दोबारा दवा डाल दें, जौने से सारे खरपतवार नष्ट हो जाए, ओकरे बाद भैया खाद डाल के सिंचाई के घूमा, कोनो दिक्कत ना है ना, मन ना मन एक लगे जाएगा और ना ही लखे जाएगा काउ कई हमार धनवा बूढ़त बा कि चल।
1: बिल्कुल सही चीज के चुनाव करा, और एक चीज में उपचारित करे के जरूरत पड़ी कि ना पड़ी।
0: नहीं, जिसे जब किसान बाजार से बिया लावत बा तो उपचारित है ये बाटे, जो कंपनी बिया है उपचारित कह के दिए थी।
1: अच्छा,
0: या अगर उपचारित करही बा तो जिसे 10-20 रुपया का PSB कल्चर आवत बा वो का लेला, या केथुओ से घर ही जोन बा ट्राइकोडर्मा लेला वो से उपचारित केला, केथुओ से सीड उपचारित के जरूर बोल चाहिए।
1: बिल्कुल, जोन आप एक बात कहे हमें बहुत अच्छा लग कि गर्मी जोताई कह ली।
0: हाँ,
1: गर्मी जोताई कह ली अपन जोन वैज्ञानिक पद्धति है DSR विधि से धान के अगर सीधी बुआई करी थी तो अपन लागत कम हुई जी, आमदनी ज्यादा हुई
0: ज्यादा।
1: और दूसरी चीज अगर ड्रैगन फ्रूट के खेती करते ही तो एक चीज और है, लगे हाथ वहू में फायदा हुई
0: जी।
1: और पंच भैया का चाहिए कि सब चीज में थोड़ थोड़ कह के
0: देखे, बाबा जी हमारे पहले कहे कि बोए गाजा बाजा जही हुए तेही राजा।
1: बहुत सही कहा, एकदम सही कहा।
0: हाँ, जब हम कई फसल पर डिपेंड हो जाए, जैसे अब हमरे लगे ये शायद मछली पालन, मुर्गी पालन, उद्यान के फसल अमरूद ड्रैगन और जोन बाटे कृषि से संबंधित जोन खेती ही वो तो होते हैं, धान गेहूं चना सरसों गन्ना अरहर तो जोन होत बा तो होते बा
1: जी।
0: तो जैसे हमरे लगे अब एक्स्ट्रा हो गया आमदनी मछली पालन मुर्गी पालन ड्रैगन फ्रूट तो और धान गेहूं, तो मान लिया यहां से एक ठी कोनो फसल नुकसान हो गए हमारे, तब वो 3 ठी बच जात बा।
1: बहुत सही,
0: 2 ठी अगर नुकसान हो गए तबो हमार दुठू बच जात।

0: अब यश तो बहाना है हमारे चारों चारों नुकसान हुई
1: जी।
0: तो यह नाते किसान भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग आवे और अच्छी आमदनी करें, खुश रहें, मस्त रहें, इससे अच्छा और का हम आप सबका बताई, सब अधिक जानकार है।
1: बिल्कुल, आपका नाम राकेश कुमार वर्मा है, ग्राम सरैया ब्लॉक माया जिला अयोध्या से आप हमारी पंचायती में आया। एक प्रगतिशील किसान के तरीके DSR धान के सीधी बुआई और ड्रैगन फ्रूट के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दिया, पंच भैया जरूर इसे लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा भैया कितना निकी मेर से हम समझित है DSR धान की सीधी बुआई और ड्रैगन फ्रूट के बारे में। श्री राकेश कुमार वर्मा भैया के जो बात रही उनसे बतवाने राम प्रकाश पांडे भैया, और हम समझित है कि ये बात से एक बात तो सामने आई है कि अपने सबका यह पद्धति पर कार्य करे की जरूरत है। अपने तमाम पंच यह पर कार्य करत हैं, एका भई करत हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास के जो उन पंच हैं उन्हों का ऐसे नसीहत लेके जरूरत है। तो यह जानकारी के लिए भाई हम समझित है अपने पंचन के थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा हुए। लेकिन एक चीज़ और है कि हमेशा अपने ज्ञान का अपने जानकारी का अपडेट रखना जरूरी है। यही हमारे देखो नवीन गल्ला मंडी जनपद अयोध्या से जौन बाजार भाव है उका अपने सभी कार्यक्रम में प्रतिदिन आप सबके बदले लावा जाते हैं। तो आज की जौन बाजार भाव है उका आप सब नोट कर सकत हो। चावल कामन 3,070 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, गेहूं दड़ा 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, मक्का पीली 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, उड़द दाल काली 9,200 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, चना देसी 6,400 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, मसूर रही 7,150 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, अरहर के दाल 10,900 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे। ये तो रहा गल्ला मंडी के भाव। सब्जी के भाव कुछ ही हमेर से रहा, आलू सफ़ेद 985 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज ललकई 1,300 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1,680 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई रही 1,130 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 2,060 रुपये प्रति क्विंटल, बैंगन 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 2,390 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 1,100 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक 8,900 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2,700 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1,430 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 7,100 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी रही 1,570 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, करेला 1,270 रुपये प्रति क्विंटल, केला पका 2,800 रुपये प्रति क्विंटल, नींबू 6,500 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता 2,765 रुपये प्रति क्विंटल, सेब 12,100 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 7,600 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 5,150 रुपये प्रति क्विंटल, चीनी 4,125 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे रही। ये तो रहा बाजार भाव। यही के साथ साथ मौसम विज्ञान विभाग से जौन अपने सबका मौसम के हाल मिला बटे उसका भी पंचन का बतावत चली कि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जौन सामान्य से 0.7 कम रहा, न्यूनतम 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जौन सामान्य से 2.3 ज्यादा रहा, अधिकतम आर्द्रता माने नमी रही 79% और न्यूनतम रही 45% तक, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है उत्तरी पूर्वी। आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हवा सामान्य गति से पश्चिम पूर्वी चले एवं औसत तापमान में सामान्य से अधिक रहने की भी संभावना है, जिससे भाई अपने सबका लू से राहत के निजात की संभावना नहीं ना। तो ये तो रहा बाजार भाव मौसम के हाल। लेकिन कल के कार्यक्रम में आप सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन सुन सकत हो। अपन कार्यक्रम 6:45 से 7:15 तक रहा थे, एमन कल आप सुने हो। लेकिन आज अब समय कहा था आपसे अनुमति लेके बरी आए गई है, फिर बात बत कही हुए कुछ नई जानकारी के साथ है। लेकिन आज के कार्यक्रम से दे अनुमति। जय हिंद।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 8:15 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 से कार्यक्रम होगा महफिल गजल। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और

रात 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 से कार्यक्रम होगा सुर संगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा, सुनीता अवस्थी की वार्ता, विषय है युवा पीढ़ी से जुड़ी सामाजिक जिम्मेदारी। 9:00 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से कार्यक्रम होगा सजीव फोन इन हेलो अयोध्या। 11:55 से सरकार के 12 साल पर आधारित विशेष श्रृंखला का 10वां भाग आप सुनेंगे। 12:30 से अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग और दोपहर 1:00 से कुछ तुमने कहा। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और दोपहर 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम होगा नारी जगत, जिसमें आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और सुरक्षित मातृत्व हर माँ का अधिकार विषय पर चर्चा। गीतों भरी कहानी होगी, विषय होगा लड़कियों के खेल क्षेत्र में प्रतिभाग पर आधारित। कार्यक्रम विवाणी का समय होगा शाम 5:00। कल है गुरुवार और कल होगा युवा संवाद यानी सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय है खेल हमारे लिए कितने जरूरी है। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और शाम 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम सुहानी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोजेश्वर गांव के आप सुन सकेंगे 6:30 से और 6:45 से कार्यक्रम होगा किसान बाड़ी। जी हाँ, कल है गुरुवार यानी कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन। विशेषज्ञ होंगे कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा के पादप सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर राम गोपाल। आकाशवाणी का फोन नंबर 7376804090 पर आप कॉल कर सकेंगे और कर सकेंगे अपनी समाधान। बाजार भाव और मौसम का हाल तो होगा ही। 8:15 से कार्यक्रम होगा गीत गुंजन और 9:15 से कार्यक्रम महफिले गजल। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। अब से कुछ देर बाद 7:20 से आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर

0: पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

पाकिजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी। कैफ भोपाली ने इस गीत को लिखा था गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गोरा और काला फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग।

राग जय जयवंती पर आधारित सीमा फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की ही आवाज से गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और अब राग यमन पर आधारित एक गीत आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म से। ये आवाज भी लता मंगेशकर की है, साहिल लुधियानवी की रचना है, संगीत एस टी बर्मन का।

राग यमन पर आधारित बहुत ही सुंदर सी रचना आपने मुनीम जी फिल्म से सुनी, लता मंगेशकर की आवाज में। इसे साहिल उद्यानवी ने लिखा था और एस टी वर्मन ने धुन बनाई थी। राग बिहाग पर आधारित ये रचना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। रचनाकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर टी बर्मन। फिल्म का नाम आपकी कसम।

आपकी कसम, फिल्म की ये रचना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुनी। इस रचना को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था आर टी बर्मन ने। ये रचना राग बिहाग पर आधारित थी। इसी रचना के साथ ही आज का राग अनुराग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आज के हवामहल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अशोक व्यास की लिखी झलकी एक कुंवारा। निर्देशक है अरविंद माथुर।
1: ला ला ला ला ला ला। ओए, माँ बदौलत तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाए और तुम अब तक बैठे हो मुंह लटकाए गंभीर चुप्पी। अच्छा है प्रयास, अरे शादी के बाद की जिंदगी का अभ्यास।
2: ओफो, बंद करो बकवास, मत करो एक दुखी का उपहास। अरे दोस्त, इस तरह की दिल्लगी से अब क्या होना है, नहीं हो रही शादी, कम वक्त इसी बात का रोना है।
1: अबे रोना है तो करता क्यों नहीं शादी?
2: कर लू।
1: हाँ हाँ कर ले।
2: हाँ हाँ कर ले, अरे पर करूँ किससे, तुझसे?
1: भाईजान भाईजान, लड़कों की शादी लड़कियों से होती है।

0: यही तो है संकट।
1: संकट? अरे संकट कैसा? अबे जिस नाजनी पर दिल आए, जिस हसीना को दिल चाहे, वहीं हरी का नाम ले और हाथ उसका थाम ले।
0: हाथ थाम लू मैं? हाँ? और वो भी लड़की का? अरे अरे ये जानता है तू अच्छी तरह, लड़कियों के सामने मैं नहीं रहता, कहीं गुम हो जाता हूँ, धड़कनों के बहाव में कहीं खो जाता हूँ।
1: अरे अरे ये तो खोने लगा।
0: ओ खोने वाले हो सके तो लौट के आना।
1: अरे अरे पर ये हाथ में पत्र कैसा? पत्र जरा बताना।
0: नहीं,
1: अरे इस पत्र के साथ तुम्हारा शर्माना घबराना, जरा देखे ऐसा क्या है इसमें फसाना।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: वाह वाह वाह, क्या खूब पैगाम है। अरे भेजने वाला सेठ दौलत राम है, शादी गुणवंती के साथ, साक्षात कार्य दामाद। मुबारक रमन जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले के इस तोहफे को स्वीकार ले, बाप बेटी दोनों को शीशे में उतार ले।
0: ओहो मजाक ना करो, मजाक ना करो, इतने अहम सवाल से तुम नहीं जानते वो कितने आधुनिक हैं, कैसे रहते हैं, और गुणवंती भी तेज तर्रार है, सब उसको कहनी कहते हैं। इस मॉड शॉट कहनी के सामने मैं जैसे तैसे अपना शरीर तो ढो लूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा सख्त होते होठों को, उसके सामने कैसे बोलूंगा।
1: ओ, तुझको गुंगा होने से बचाना होगा, इसके लिए मुझे कोई चक्कर चलाना होगा।
0: चक्कर? क्या कोई चक्कर चल सकता है? क्या इस समस्या का भी हल निकल सकता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं हो रहा विश्वास, क्या मुझे करना पड़ेगा उपवास?
1: नहीं प्यारे, हमें करनी होगी रिहर्सल, यानी कि पूर्वाभ्यास।
0: रिहर्सल? पूर्वाभ्यास? ये कैसी पहेली?
1: सुन सुन, कुछ देर में यहाँ आने वाली है मेरी सहेली।
0: तेरी सहेली यानी सोनिया? सोनिया और रिहर्सल? नहीं समझ पाया कुछ, होने लगी है बेचैन सी हलचल।
1: ना समझ बालक, बीत गया समय अब तेरे डरने का, हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का।
0: वो कैसे महाराज?
1: वो ऐसे समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल।
0: ये कमरा मेरी ससुराल? ओहो वो ही बुझो तो जाने वाला हाल।
1: लो कम आईक्यू वाले सज्जन, सीधे शब्दों में कहता हूँ समझाकर, इंटरव्यू होगा पहले तेरा यहाँ सोनिया को गुणवंती बनाकर। लगता है आ गई सोनिया। हेलो सोनिया।
2: हेलो संजय।
1: सोनिया अभी बात हो ही रही थी तुम्हारी, वो देखो मुंह फेरे खड़े हैं मजबूर ब्रह्मचारी, आओ इधर जाने मन। सोनिया ये है रमन।
2: रमन? ओह सुना है आप लड़कियों से बहुत कतराते हैं।
1: हाँ, इनकी समस्या ये ही है कि ये घबराते हैं।
2: कीजिए समस्या का खुलासा।
1: एक कुंवारा शादी का प्यासा, एक इंटरव्यू पर टिकी हुई है आशा, लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है इनका तमाशा।
2: तो अब
1: देवी हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे, तुम बनो गुणवंती और हम सेठ दौलत राम का रूप धरेंगे।
2: ओह हेलो डैडी।
1: हेलो ज्ञानी बेचे। तो रमन जी कुछ पल के लिए तशरीफ ले जाइए और वापस इस कमरे को अपना ससुराल मान कर आइए।
0: लेकिन संजय वो ये वो
1: अजी ये वो को बंद करिए, बाहर जाकर कंघे से संवरिए, ससुराल पहली बार आ रहे हो, अंदर आते समय उतना डरिए।
0: तो मैं चला
1: जाओ, भगवान करेंगे तुम्हारा भला। बड़ा भोला है रमन सोनिया।
2: कौन रमन डैडी, कैसे सोनिया?
1: ओहो आई एम सॉरी। सुनो मैं जा रहा हूँ अंदर तुम्हारी मम्मी के पास, शादी का इंटरव्यू देने आएंगे कोई रमन व्यास, जैसे चाहो सवालत कर लेना, बात कुछ जमे

0: Hol dir Habardena.
1: Come in.
2: मैं आ तो गया हूँ धड़कते दिल को संभाले, हेलो भी उनको कहूँगा अगर वो नजर उठा ले। जी
1: आराम कुर्सी पर बैठे, मैं देखती रहूंगी यही पेस किताब का। देखे क्या हाल होता है नेगलेक्टेड खड़े खड़े जनाब का।
2: जी सुनिए, जी सुनिए।
1: जी कहिए।
2: जी जी जी मैं हूँ।
1: तो मैंने कब कहा कि आप उल्लू हैं?
2: जी
1: जी
2: जी जी रमन नाम है मेरा, वो शादी की बातचीत के लिए बुलवाया गया हूँ।
1: तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं?
2: जी नहीं, जी हाँ वो मेरा
1: आप
2: मतलब
1: शादी क्यों करना चाहते हैं?
2: जी वो सब लोग करते हैं इसलिए, मैं भी। वैसे
1: अगर सब लोग शादी नहीं करें तो क्या आप भी नहीं करेंगे?
2: जी नहीं, जी नहीं वो मेरा मतलब वो जी।
1: अच्छा अपना मतलब फिलहाल भूल जाइए, और शादी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल सवाल के जवाब देने को तैयार हो जाइए। तैयार?
2: जी तैयार।
1: तो ये नारी और पुरुष में आप किसको ऊंचा स्थान देते हैं ये बताइए।
2: ऊंचा स्थान वो, हाँ वो जी, कभी कभी नारी को और कभी कभी पुरुष को।
1: अच्छा ये नारी वाला कभी कभी कब होता है?
2: जी ये जब पुरुष वाला कभी कभी नहीं होता है।
1: वेरी इंटरेस्टिंग।
2: हाँ जी।
1: तो अच्छा बताइए कि शादी से पहले रोमांस के बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: शादी के पहले रोमांस यानी नट की तरह रस्सी पे डांस, दोनों तरफ गिरना ही है। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो वैसे मेरा एक दोस्त है संजय, एक्सपीरियंस्ड है, उससे पूछकर आपको बता दूंगा।
1: अच्छा बताइए आप तलाक के पीछे क्या वजह मानते हैं?
2: जी तलाक के पीछे तो बस एक ही वजह होती है।
1: वो क्या?
2: जी वो है शादी।
1: ओह अच्छा आपको खाना बनाना आता है?
2: जी खाना जी वो आता तो नहीं है, पर आप कहेंगी तो सीख लूंगा।
1: क्या मैं इतनी अच्छी लगने लग गई? अच्छा मेरी तारीफ में कुछ कहिए।
2: आपकी तारीफ में मैं जी वो जी आप हैं।
1: बहुत खूब यानी कि मैं लीजिए डैडी भी आ गए। डैडी मिस्टर रमन कहते हैं कि मैं हूँ।
3: ओहो पर तुम इनके बारे में क्या कहती हो?
1: नॉट बैड, चल सकता है।
3: तो मिस्टर रमन तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम तो पास कर चुके हो, फाइनल में सिर्फ एक सवाल है। मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, कभी डांट दे या तुम्हारे कान खींच दे, तुमको थप्पड़ वगैरह मार दे, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे?
2: मेरे कान खींच दे, मुझे थप्पड़ मार दे, बुरा जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा।
3: तो गुणवंती बेटी और मिस्टर रमन दोनों प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ एक थप्पड़ का सवाल है।
2: बस ये सोनिया जी का थप्पड़ तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, मुझे खाना ही पड़ेगा तो असली गुणवंती का खाऊंगा, रिहर्सल ओवर।
3: ओके समाप्त हुआ पूर्वाभ्यास, अच्छा रहा प्रयास, तुम्हारी सफलता की होने लगी है आस। थैंक यू सोनिया, से 3 चीयर्स फॉर रमन व्यास।
4: देखा
3: हमारा फोन भी बोलने लगा है अपनी चुप्पी से निकल के, समझ कर हमारे यार की खुशी ट्रिन करने लगा है मचल के।
1: अब उठाकर देखो भी क्या समाचार लाया है, जरूर रमन साहब के लिए गुणवंती का बुलावा आया है।
3: क्यों रमन, नाम सुनकर ही शर्मा गया भाई? वाह सोनिया अब मजा आ गया। हेलो कौन? ओहो दिनेश, प्रेस रिपोर्टर साहब, आज हमें कैसे याद किया आपने, क्या समाचार है? अबे लड़की भाग गई, 50,000 का इनाम भी, लखपति की बेटी। अब भाई मैं लड़कियां भगाने वाला नहीं हूं, यहां तो खुद एक लड़की आई हुई है।

0: मुझे भगाने? हाँ हाँ सोनिया यही है, ले बात कर।
1: हेलो भाई साहब, किसको भगा दिया आपने? क्या सेठ दौलतराम की बेटी गुणवंती?
0: क्या गुणवंती भाग गई? आए, आए, अब मेरा क्या होगा? आए, मेरी शादी, गुणवंती भाग गई।
1: अरे अरे ये तो बेहोश होने लगे।
2: अरे रमन रमन, अरे क्या हुआ तुझे? सोने पानी लाओ। रमन रमन क्या हुआ तुझे?
1: ये लो पानी।
0: आंखें खुलने लगी हैं, रमन होश में आ रहा है। रमन।

है कुंवारा। अभी आप सुन रहे थे अशोक व्यास की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे अरविंद माथुर। ये थी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध

0: अभी हम सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
2: हेलो
3: सुनो टेलीफोन नंबर।
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: कार्यक्रम गीत गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: ममता शर्मा और जावेद अली की आवाज, फिल्म है यमला पगला दीवाना।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में भी हम सुन रहे थे समीर का लिखा हुआ गीत, संगीत था अनु मलिक का, फिल्म थी बादल। इसी के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन से दीजिए विवेकानंद को इजाजत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत कुंचन FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर

0: का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai, jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tej gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है।

0: country's youth power with government support is bringing a new dawn for India. With Anupam Mishra, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
1: India has condemned the attack on the commercial vessel Setebello off the coast of Oman today. External Affairs Ministry said in a statement that of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued so far and 3 Indians are reportedly missing. It informed that the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at the Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo. Sindhu's pre-quarterfinal match will be against compatriot and world number 39, Isharani Barua. Tanvi Sharma also showed signs of returning to form with a 21-12-22-20 win over world number 11, Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advance to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
2: FM band par hum Akashwani ke Ayodhya kendra se bol rahe hain. 9:15 aur 10 second hue hain. प्रस्तुत कार्यक्रम महफिल गजल.
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना. नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया. 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड. आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज.
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज. आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या. कॉल करें 6386907006.
7: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक. आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम. इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से. अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या. सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच. आप हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashwani@gmail.com. ayodhyaakashwani@gmail.com.
2: कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए रूना लैला की आवाज में ये की

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
3: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9599242404 और 7800037222।
9: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8300

0: 3219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सजीव फुनिन हेलो अयोध्या। तो बस मिलाना है आपको हमारा नंबर वही है 7376 80 40 90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें, क्योंकि यह है लाइव फुनिन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। स्वीकार करिए विवेकानंद का नमस्कार और आपको बताएं कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं अश्विनी शुक्ला। फिलहाल एक कॉल आ गई है। हेलो हेलो
2: हेलो नमस्ते सर।
1: नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है?
2: रिवांशी पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
1: अच्छा, आप क्या करते हो?
2: मैं तो पढ़ाई करते हूँ।
1: पढ़ाई?
2: हाँ।
1: किस क्लास में हो?
2: सर मैं बीएससी कर रही हूँ।
1: अच्छा, तो अच्छा बीएससी कर रहे हो तो तीन सब्जेक्ट होगा ना?
2: नहीं सर, दो सब्जेक्ट है।
1: दो है?
2: अब ना नई शिक्षा नीति से इस बार ना दो ही सब्जेक्ट कर दिया।
1: हाँ, अब साल में हम लोग पुराने वाले हैं ना, तो हम लोग का तीन तीन था। तो दो सब्जेक्ट में कौन कौन सा है? और इन दोनों में आपको अच्छा कौन सा लगता है? क्यों?
2: क्योंकि सर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में।
1: नहीं, क्यों? जैसे उसमें क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से वो आपको अच्छा लगता है?
2: वैसे तो सर दोनों सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में अच्छे लगते हैं, पर सर ज़ूलॉजी इसलिए अच्छा लगता है सर कि उसमें ना जीव जंतुओं के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती है ना, तो उसके बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।
1: ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। तो आज किस फिल्म का गीत सुनिएगा?
2: सर मैं तो गाना आपकी पसंद का सुनना चाहूंगी।
1: मेरी पसंद का?
2: क्योंकि सर आपकी पसंद इतनी अच्छी है ना कि आज आपने गीत गुंजन में इतने अच्छे अच्छे गाने चलाए ना कि हमेशा मन खुश होता था, पर आज दिल खुश हो गया।
1: क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब मन खुश होता था, आज दिल खुश हो गया। ओहो,
2: हाँ आज दिल खुश हो गया।
1: क्या बात है।
2: और सर पता है ना, मैं आपसे बात करने के लिए ना बहुत परेशान थी। मैंने बोला था कि अब जब सर आएंगे ना तो मैं सर से बात करूंगी, और आज आपसे मैं पहली बार बात कर रही हूँ।
1: और पहली बार आपकी हमारी बात हो रही है और आपकी कॉल भी पहली है।
2: हाँ, आज मेरी कॉल भी पहली है और आपसे पहली बार बात भी हो रही है, इसीलिए तो मैंने सोचा ना कि मैं कॉल भी पहली लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहली बार बात करनी तो मेरी कॉल भी पहली ही होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है। अच्छा, और मौसम कैसा है इस समय आपके गोंडा में?
2: सर मेरे यहाँ का मौसम ना तो इस वक्त ना बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है।
1: बारिश नहीं हो रही है?
2: नहीं बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी।
1: अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर।
2: और सर पता है ना, रेडियो को भी बाहर ले जाके रख दिया है, इसलिए कि ये भी तो उसको भी तो गर्म लगती है ना।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, उसे भी तो
2: उसको भी बाहर रख दिया है। और सर पता है ना, मैं पढ़ाई करती रहती हूँ और रेडियो भी सुनती रहती हूँ। मेरा एग्जाम आने वाला है तो सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए जब खुद लोग सब लोग डांटेंगे तो मैं बाहर चली जाऊंगी और बैठ के, जब अपने रूम में बैठ के पढ़ती रहूंगी उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं बुक लेकर आ जाऊंगी, जहाँ रेडियो रहेगा वहीं पर बैठ के पढ़ने लगूंगी, फिर सब लोग बोलेंगे फिर आ गई यहीं पर। तो कहते पढ़ाई तो कर रही हूँ ना, कहीं भी बैठ के करूँ, यहाँ अच्छा लगता है पढ़ना। सर रेडियो के साथ ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: बढ़िया है, अच्छी बात है, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा।
2: सर मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक गीत प्ले कर रहा हूँ, सुनिए।
2: ठीक है, ओके सर, बाय
1: बाय। श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रम की पहली कॉलर। आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा, करना कुछ नहीं है, नंबर वही है 7376 80 40 90 और मिलाइए और फिर करिए हमसे बातें। जी हाँ, लाइव फॉर प्रोग्राम।

0: जी हाँ श्रोताओं, ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्या। आप इसमें मिलाएंगे फोन और फिर करेंगे हमसे बातें। एक कॉल आ रही है, इसे रिसीव करते ही कॉल डिसकनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं श्रोताओं, मिलाते रहिए। नंबर वही है 7376804090 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें। लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अध्या, शुरू हो चुका है आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से और एक कॉल भी आ गई है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाए हैं? जी आपकी कॉल लग गई, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ आकाशवाणी से ही बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हरिगांव से बोल रहे हैं।
0: कहाँ से?
1: हरिगांव से।
0: हरिगांव कहाँ है?
1: बस्ती
0: में। बस्ती, क्या बात है, अपना नाम भी बताइए।
1: राम सूरज वर्मा।
0: अच्छा राम सूरज जी, आपके पास में ही हमारा ट्रांजिस्टर भी है ना?
1: हाँ।
0: वो उसी की वजह से हमारी आपकी आवाज बार बार आ रही है। उसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए और फिर हमसे बात करिए। और आप बताइए।
1: चांद के पार
0: कौन सा?
1: चांद के पार।
0: चांद के पार, ठीक है, हम चांद के पार सुनवा देंगे आपको, लेकिन आप करते क्या है? अच्छा, तो इस समय कौन सी फसल है खेत में?
1: गन्ना
0: है। तो इस समय आप भी खेत में ही हैं क्या?
1: हा?
0: आप भी खेत में ही हैं क्या इस समय?
1: हवा बहुत तेज चल रही है, सुनाई नहीं
0: दे रहा। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप भी इस समय खेत में ही हैं क्या?
1: बहुत तेज हवा है।
0: अच्छा, हमें लगता है कि कुछ ज्यादा ही तेज हवा है, इसी वजह से आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए फिर।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, ऐसी जगह ना रहिए जहां हवा बहुत तेज हो, नहीं तो बातें नहीं हो पाएंगी हमारी आपकी।

फिलहाल उनकी पसंद का गीत हमने प्ले कर दिया है और आप मिलाते रहिए फोन, नंबर वही है, कोई मैजिक नहीं। जी हाँ, 7376804090।

0: जहाँ श्रोताओं मिलाकर ये फोन और फिर हम और आप भी चांद के पार चलेंगे। हेलो अयोध्या के इस कार्यक्रम में कॉल आ गई। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए?
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: हाँ सर, नवाबगंज कोंडा से बोल रहे हैं, महावीर सिंह।
0: अच्छा अच्छा, महावीर सिंह जी, तो और बताइए, मतलब आप तो प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
1: जी जी,
0: आपके यहाँ से
1: बताएं। पहली बार लगी है सर।
0: अरे वाह, लेकिन आपके यहाँ से जो आप पता बताए हैं लौआ बीरपुर के आसपास से फोन बहुत आता था, लेकिन अब नहीं आता है वहाँ से फोन।
1: जी जी
0: हाँ, एक थे कट्टा महाराज जी।
1: जी जी कट्टा जी हमारे साथी हैं।
0: हाँ, लेकिन देखिए वो फोन नहीं करते अब, तो फोन करना अच्छा, चाहिए है ना। अच्छा खैर, आप क्या करते हैं?
1: जी हम तो खेती कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो इस मतलब गांव का पूरे सभी का ग्रामीणों का सबका ख्याल रखते होंगे ना?
1: जी जी जी,
0: बहुत बढ़िया। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: जी हमको देशभक्ति की गाना सुना दीजिए।
0: देशभक्ति कोई
1: हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
0: हाँ, लेकिन ऐसा गाना क्यों सुन रहे हैं, मतलब कर चले हम, क्या बात है?
1: ये भक्ति के देशभक्ति के गीत सर हमको बहुत पसंद है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तो हम आपको ये गीत सुनवाएंगे, लेकिन बस वही है कि हम ये सोच रहे थे कि ये वाला गीत आप क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या बात है, क्योंकि देशभक्ति और भी गीत है बहुत से। कर चले हम फिदा, मतलब आप शहीदों को याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ना।
1: जी जी
0: सही है, ठीक है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले जब उधर से बात हो रही थी, हमें लगता है कि आपके ही तरफ गोंडा से ही बात हुई थी पहली कॉल, दूसरी पहली कॉल की।
1: जी हमारी घंटी भी गई थी, लेकिन

0: जो दूसरे का फोन उठ गया, हमारी कट गया था।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ, क्या आवाज हमारी नहीं मिल रही है क्या, कुछ ऐसा?
0: नहीं, आज आ रही।
1: अच्छा, एकदम से शांति हो गई थी तो वही मैंने कहा पूछें, देखें क्या बात है, कहाँ आप?
0: नहीं, पर आवाज आ रही है।
1: हाँ, नहीं ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुनवा दें।
0: जी।
1: तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
0: नहीं, हमारे परिवार के, हमारी जो है लड़कियां हैं और नाती
1: हैं, मतलब सब
0: है, सब
1: सब लोग सुनते हैं, पूरा परिवार सुनता है।
0: जी
1: ठीक। हम आपकी पसंद का गीत देख रहे हैं, मिल जाएगा तो अवश्य बजाएंगे, है भी ये हमारे पास, हमको याद आ रहा है। नहीं नहीं, यही है, ये है हमारे पास, हमको याद आ रहा है, ये है
0: जी।
1: तो हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, क्योंकि कुछ ऐसे गीत होते हैं जो किसी अलग जगह रखे होते हैं
0: जी।
1: तो वही हमें ढूंढने में जो है दिक्कत होती है, हमको क्या, किसी को भी, हमारे किसी भी साथी को होती है।
0: आपके सभी प्रोग्राम सर बहुत अच्छे लगते हैं सर, और बड़ा ही ज्ञान वर्धक प्रोग्राम आप लोगों का है सर।
1: सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है आपको?
0: सर जी, जो दोपहर में 12:30 बजे आता है लोक रंग, वो भी अच्छा लगता है।
1: और
0: अरे, आपके सभी प्रोग्राम अच्छे लगने लगे, वो लोक रंग और ये जो है फोनिंग कार्यक्रम भी अवश्य सुनते हैं।
1: फोन इन कार्यक्रम भी आपको अच्छे लगते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल हमें नहीं मिला गाना आपका, मुझे लगता है किसी और नाम से होगा वो। चलिए ठीक है, फिलहाल एक देशभक्ति गीत हमें मिल गया है, हम वही आपके लिए प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी बात होगी तो और श्रोता जो है, जो कॉल करना चाह रहे हैं, जो मिलना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पाएंगे, है ना?
0: नमस्ते।
1: शुरू, आप भी कर सकते हैं कॉल और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत, वो भी है, लेकिन फिलहाल ये सुनिए।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: सर, हम दसौली से बोल रहे हैं, अयोध्या जिले से।
0: अयोध्या जिले से। अपना नाम भी बताइए।
1: करण। करण।
0: करण।
1: हाँ।
0: अच्छा करण, क्या करते हो आप?
1: कुछ नहीं, बस खेती में काम करते हैं।
0: तो इसमें मेहनत तो बहुत होती है ना?
1: हाँ, मेहनत बहुत होती है।
0: तो इस समय कहाँ हैं आप? घर पर हैं कि खेत में हैं? कहाँ हैं?
1: नहीं, घर पे हैं।
0: तो आप अकेले प्रोग्राम सुन रहे हैं, और भी लोग हैं आपके साथ?
1: नहीं, हमारे घर में सभी सुन रहे हैं।
0: सब लोग सुन रहे हैं?
1: हाँ, सब लोग।
0: तो आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते रहते हैं?
1: हाँ, हमेशा सुनते रहते हैं।
0: कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: हेलो फरमाई तो सब जो बातें आती हैं, किसान वाणी, ये सब अच्छा लगता है।
0: सही है। कल आएगा कार्यक्रम किसान वाणी का, सजीव फोन इन रहेगा।
1: अच्छा
0: सर। फोन करके आप बातचीत कर सकते हैं उसमें।
1: ठीक है सर।
0: तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे बताइए?
1: राजा हिंदुस्तानी का सुना दीजिए।
0: राजा हिंदुस्तानी का कौन सा गाना?
1: कोई
0: भी। तो ठीक है, हम आपको पसंद, आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। तो खेती किसानी में मेहनत बहुत है, अभी आपने बताया ही, तो सबसे अच्छी फसल कौन आसानी से हो जाती है?
1: कोई आसानी से होता है, बस थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है,
0: देखभाल करनी होती है ना? कोई भी फसल हो, सबके लिए देखभाल करनी पड़ती है। चलिए ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चाहे खेती किसानी हो या कोई भी काम हो, देखभाल और उसके प्रति नहीं ध्यान पूर्वक रहेंगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए फिर। नमस्ते श्रोताओं, लाइव फॉर इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष इन से। और ये घड़ी है ना, टिक टिक टिक टिक करते हुए बढ़ रही है। 9:55 हो चुका है, मिलाते रहिए फोन, नहीं तो धीमे से ये 10:30 हो जाएगी और फिर प्रोग्राम मिलाते रहिए।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्याप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष से ठीक 10 बजे हैं। छोटे से अंतराल के बाद फिर मिलते हैं, बस मिलाते रहिए फोन 73 76 80 40 90।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
4: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
3: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
4: जी हाँ, और वो है योग।
3: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
4: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
3: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
4: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
3: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
5: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
5: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।

0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
3: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
2: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
3: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
2: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
3: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
2: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
4: लाइव फोन प्रोग्राम हेलो अध्याप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्यक्ष से कॉलर।
5: हेलो
4: हेलो, आपकी कॉल लग गई, कहाँ से फोन लगाए हैं?
5: हेलो,
4: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
5: जी सर, शुभम सिंह मीरपुर से बोल रहे हैं सर, अयोध्या से।
4: कहाँ से? अयोध्या से कहाँ से?
5: जी मीरपुर से।
4: अच्छा, अपना नाम बताइए।
5: शिवम सिंह।
4: तो शिवम सिंह आप क्या करते हैं?
5: कुछ नहीं सर,
4: घर पर। अरे नहीं, कुछ तो करते ही होंगे आप, मतलब पढ़ाई?
5: रहते हैं सूरत में, रहते हैं, अभी गांव आए हैं सर।
4: अच्छा, सूरत में रहते हैं, तो सूरत में क्या करते हैं, मतलब सूरत क्यों?
5: लेस काम है हम लोग का।
4: अच्छा
5: जी,
4: तो वहां से अब कितने दिन तक रहेंगे यहां?
5: अब 1-2 महीना रहेंगे सर, उसके बाद से जाएंगे, थोड़ा मौसम सही हो जाएगा तो धान वान लग जाएगा तब जाएंगे।
4: अच्छा, तो मतलब परिवार की मदद कराने के लिए आए हैं ऐसे कहें?
5: जी, तो आ जाते हैं, गेहूं होगा, कटाई होता तब आ जाते हैं।
4: नहीं, सही भी है और ये अच्छा है कि आप परिवार की मदद करने चले आते हैं ना। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
5: कोई भी सुना दीजिए।
4: कोई भी,
5: आप अपने पसंद का सुना दीजिए।
4: ये बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है कि हमें
5: आप सबसे पसंद का सुनाते हैं, आप अपने हिसाब से अपने पसंद का सुना दीजिए।
4: ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो आप जब यहाँ आते हैं तभी प्रोग्राम सुनते हैं कि जब वहाँ रहते हैं तब सुनते हैं? मतलब
5: नहीं, वहाँ भी सुनते हैं।
4: वहाँ भी सुनते हैं, वाह क्या बात है। तो सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका कौन सा है?
5: यही सबसे अच्छा लगता है, इसी को ढूंढते
4: हैं। तो आपकी कॉल आज पहली बार लगी कि इसके पहले भी लगी?
5: पहली बार लगे, लगाते तो बहुत बार थे लेकिन पहली बार लगे।
4: क्या बात है, चलिए बढ़िया। तो आपकी पसंद यानी मेरी पसंद का गीत
5: आप
4: जी मैं प्ले कर दिया हूँ, सुनिए
5: जी। नमस्ते
4: नमस्ते।

0: जी हाँ श्रोताओं, बस मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए। जी हाँ, कभी तो कॉल लगेगी ही, और जब कॉल लगेगी तो हमारी आपकी बातें होंगी और मैं आपसे कहूंगा हेलो हेलो। जी आपकी कॉल लग गई, कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: सर मिल्कीपुर क्षेत्र से लगाया है, अयोध्या से।
0: अच्छा, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम हरिश्चंद शर्मा है सर।
0: क्या करते हैं?
1: अभी तो मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो इस समय कहाँ है?
1: समय खेत पर ही हूँ।
0: यही तो मुझे लगा, क्योंकि आपके पीछे हवा बहुत सुनाई दे रही है। क्या चल रही है? क्या
1: हवा बहुत तेज चल रही है।
0: अच्छा, क्या मौसम कुछ लग रहा है बारिश का, कि बारिश हो जाएगी क्या?
1: जी कल थोड़ा सा तो ठंडी हवा चली थी, थोड़ा सा पानी दो मिनट के लिए आया था, बाकी तो निकल गया, लेकिन आज ठंडी हवा चल रही है।
0: तो इसी तरह जान जाते होंगे आप ना कि मौसम इस तरह कुछ बदल रहा है।
1: जी ये तो दिखता रहता है।
0: तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: आज सुनेंगे सर आए दिन बहार के।
0: आए दिन बहार के, तो इसका कौन सा गाना? यही आए दिन बहार के फिल्म का कौन सा गाना?
1: जो भी अब आप सुना दें, सब गाने अच्छे हैं उसमें तो।
0: ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ कोई आपके लिए अच्छा सा गीत। तो और बताइए, आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
1: अभी तो खेत पर अकेले हूँ सर मैं।
0: तो खेत पर कब तक रहते हैं? रात भर रहते हैं?
1: रात भर रहता हूँ, सवेरे जाता हूँ 6-7 बजे।
0: अच्छा, तो हमें लगता है वो जो मचान बनाते हैं वो बना करके रहते होंगे आप ना?
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात सही बात।
0: क्योंकि नीचे जमीन पर सोना ठीक नहीं है।
1: जी वो जंगली जानवर जैसे सियार वार बोहराहे वोराहे आ जाते हैं तो काट कूट ले।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और जब मौसम खराब हो जाता है तब क्या करते होंगे?
1: जैसे तो पास में ही वो ट्यूबवेल लगी है, चद्दर उद्दर रखी है, उसमें सूख जाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक करते हैं, सुरक्षा भी जरूरी है ना?
1: जी जी।
0: ठीक है, तो आपके लिए हम इसमें इस फिल्म का एक गीत है, वो आशा भोसले की आवाज में, वो हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।
0: बिल्कुल, नमस्कार। श्रोताओं मिलाते रहिए फोन। जी हाँ, 10:12 और 10 सेकंड हो चुके हैं।

0: जी हाँ, कर दो ना कॉल। आप भी एक आ गई कॉल, देखा मैंने कहने का असर। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन?
1: आदित्य बोल रहे हैं, बड़ी मजा नहीं आता था के।
0: आदित्य?
1: हाँ सर।
0: कहाँ से?
1: सर बड़ी मजा नहीं आता था के।
0: अयोध्या से। क्या करते हो आप आदित्य?
1: सर पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हो?
1: सर थ्री में।
0: थ्री?
1: यस।
0: अरे वाह, थर्ड में पढ़ते हो आप। तो क्या इस समय तो छुट्टी चल रही है ना बाबू?
1: यस सर।
0: तो छुट्टी के पहले क्या स्कूल में पढ़े थे?
1: सर
0: छुट्टी के पहले स्कूल में क्या पढ़े थे?
1: सर सर पढ़ाई चल रही थी सर।
0: तो क्या पढ़े थे ये बताइए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मैथ्स पढ़े, क्या पढ़े थे?
1: सर हमको दिखता नहीं है। हमको दिखता नहीं है।
0: आपको दिखता नहीं है? तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं है आप?
1: सर पढ़ते हैं।
0: तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ते हैं?
1: ब्रेल स्लेट से पढ़ते हैं।
0: ब्रेल लिप में पढ़ते हैं, वाह क्या बात है, बढ़िया है। तो ब्रेल लिप में कैसे मतलब पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती है?
1: नहीं सर।
0: तो कौन पढ़ाता है आपको, सर की मैडम?
1: सर पढ़ाते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, गाना सुनेंगे आप?
1: सर बीस साल फिल्म का गीत चाहिए।
0: किसका?
1: बीस साल फिल्म का गीत।
0: बीस साल?
1: यस सर।
0: बीस साल तो देखना पड़ेगा, हमारे पास 20 साल है कि नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है, और कोई बताइए।
1: जिगर फिल्म का सुना दीजिए।
0: जिगर? आपके साथ है कौन इस समय?
1: सर हम अकेले हैं।
0: नहीं, सही सही बताइए, क्योंकि आप पहले

0: जिगर ही बोलने जा रहे थे, फिर आपने 20 साल कह दिया।
1: सर हम अकेले बात कर रहे हैं।
0: अकेले कर रहे हैं आप? अरे तो घर वालों को पता है कि नहीं पता है कि हमारी आपकी बातचीत हो रही है?
1: तो पता है।
0: अरे तो पता है तो वही तो पूछ रहे हैं कि और कौन है आपके साथ बेटा?
1: तो हमारे दो भाई हैं।
0: और
1: सर मम्मी पापा हैं।
0: वाह क्या बात है, तो मम्मी पापा भी सुन रहे हैं प्रोग्राम?
1: नहीं सर, सुनते हैं।
0: अच्छा क्या बात है, कुछ अच्छी बात है, फिलहाल अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आदित्य जी आपकी पसंद का गीत है, फिर हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते। देखा श्रोताओं छोटे से हैं लेकिन फोन कर दिए, तो आप भी फोन कर सकते हैं, नंबर वही है 73-76-80-40-90। लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अध्याय।

0: लाइव फन एंड प्रोग्राम। हेलो अध्या, एक कॉल आ गई है। हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबरपुर गोंडा से।
0: स्वाति सिंह, वाह भाई वाह, गोंडा से।
1: यस सर।
0: आपकी बात पहले भी हुई है हमारी।
1: हाँ सर, पिछले समय बात हुई थी आपसे।
0: हाँ, और आपने एक बढ़िया सा खूबसूरत सा गीत गुनगुना दिया था।
1: हाँ सर,
0: बिल्कुल मुझे याद आ गया है। तो अब बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा?
1: सर स्वीकार किया मैंने फिल्म का सुना दीजिए।
0: स्वीकार?
1: स्वीकार किया मैंने।
0: अच्छा, इसका कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: सर ऑन एयर बात हो रही है कि अभी तो ऑफलाइन है?
0: जी ऑन एयर बात हो रही है।
1: सर तो स्वीकार किया मैंने का ये गाना सुना दीजिए। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हंसने लगता है। जैसे तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हंसने लगता है। चांद के पास जो सितारा है। जी
0: क्या बात है, आज

0: भी आपने बहुत बढ़िया गाया, उस दिन भी बहुत बढ़िया गाया था, और इत्तेफाक देखिए आपकी कॉल ऑन एयर लगती है और ऑन एयर हो भी जाती
1: जी,
0: है।
1: पिछली बार भी मेरी गाइस ऑन एयर हो गई थी, इस बार भी हम कंफ्यूज है कि मेरा, क्योंकि अब रेडियो ऑफ कर दिए थे जब फोन लगा मेरा तो।
0: नहीं तो हाँ, आपकी कॉल ऑन एयर है और ऑन एयर ही होती है हमसे बातचीत। बढ़िया लगा, आपकी कॉल आती है तो हम भी खुश हो जाते हैं और आप भी खुश हो जाते हो। ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हमने प्ले कर दिया, सुनिए।
1: जी सर, थैंक यू।
0: बहुत बढ़िया गाते हो आप, इसी तरह गाते रहो।
1: जी सर, थैंक यू।
0: ठीक, नमस्ते।

0: जी हाँ श्रोताओं, बस सफर पूरा होने को है। आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का कॉल का हम कर रहे हैं इंतजार। एक कॉल आ गई। हेलो हेलो जी, आपकी कॉल लग गई है। हेलो, बहुत धीमे आ रही है आपकी आवाज।
1: हाँ सर, आवाज तो आपकी मिल रही है लेकिन हमारी धीरे जा रही है।
0: हाँ बहुत धीरे आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बोल रहा हूँ बस्ती जिले से।
0: अच्छा अच्छा, अपना नाम भी बताइए।
1: चंद्रशेखर मिश्रा।
0: हेलो, क्या नाम बताए?
1: चंद्रशेखर मिश्रा।
0: अच्छा, चंद्रशेखर मिश्रा, ठीक है। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: डॉन पिक्चर का सुना दीजिए सर।
0: डॉन, ठीक है। तो हम आपके पसंद का गीत प्ले कर दे रहे हैं। वक्त बहुत कम है क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है।
1: ठीक है सर।
0: ठीक है ना, तो मैं आपकी पसंद का गीत डॉन फिल्म से प्ले कर दिया हूँ। सुनिए, फिर कभी बात होगी, मिलाते रहिएगा।
1: ठीक है सर। ठीक है,
0: ठीक है, नमस्ते।

श्रोताओ फिलहाल हेलो अयोध्या का सफर आज हुआ पूरा। डीजे विवेकानंद को इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मौसम लगातार बदल रहा है, कभी धूप तो कभी ठंड हो रही है। ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको बताएं कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे अश्विनी शुक्ला। फिलहाल आज का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:30 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में है।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र